यू नो व्हाट, हर तरह की तैयारियां हमें एडवांस में करना पसंद है, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब हम फेस्टिवल मोड पर जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी रह जाती हैं और फिर एंड मोमेंट में जो तैयारियां होती है ना उसमें कुछ कुछ रह भी जाता है। सो व्हाई नॉट आने वाला रक्षाबंधन थोड़ा सा परफेक्ट बना दिया जाए। अच्छा, आप राखी इस बार यहीं पर

बांधने वाली है या इंडिया कुरियर करने वाली है? So Radio Masi 24/7 Live पर मैं आरजे अनुप्रिया आपके साथ, और जैसे ही बैक टू बैक ना ये फेस्टिवल डेज आएंगे ना, पूरा साल निकल जाएगा, आई बेट यू, वक्त का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि आप ना ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर्स शॉप से ना राखी, लुम्बा, पूजा, हर तरह की सामग्री ले सकते हैं। स्पेशल कलेक्शन है वहां पर, एंड स्पेशल फेस्टिव रेंज भी आप अभी ऑनलाइन जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। jyoti.com.sg लॉग ऑन कीजिए और आपको पूरा इनका पोर्टफोलियो नजर आ जाएगा। सो डेफिनेटली हैप्पी शॉपिंग। मैं आरजे अनुप्रिया मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। सो बातें और गाने लगातार होने के साथ साथ बता दूं, हमारा नाम बदल चुका है। हाँ जी, स्टोर पर आप हमारा नाम मस्ती मीडिया 24/7 देख पाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी हमारा सेम नाम है, एंड फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क के नेम से हम मिल जाएंगे। सो बस नाम बदला है, अंदर का एंटरटेनमेंट नहीं। आरजे नुपुर द साइट मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
4: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
5: जोश में रहो।
6: सच बताना, आप भी तो बहुत सारी चीजों में सही होते हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और ज्यादा रिफ्रेस करवा लेते हो चीजें, तो क्या आप एक इंटेलिजेंट इंसान नहीं हुए? हाँ, देखो आप भी चीजें थोड़ी सी टचअप करवा के थोड़ा सा करेक्शन के साथ आगे रिप्रेजेंट करते हो, आपका अपना स्टाइल है, तो आजकल के बॉलीवुड सिंगर्स का भी अपना स्टाइल बन चुका है। हाँ जी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और अभी तक ऑटो ट्यून जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर नेगेटिविटी फैलाने वाले जो सिंगर्स है ना, वो अब थोड़ा पॉजिटिव बातें भी करने लगे हैं। जैसे कि सोनू निगम, उन्होंने कहा कि जब चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान किया जा सकता है, तो क्यों ना मैं कुछ कुछ जगह डिजिटल म्यूजिक का जो टेक फ्रेंडली ऑप्शन है उसको ऑप्ट कर लूं। हाँ, बाकी जो चीजें मेरे लिए इजी पड़ती है मैं उन्हें नॉर्मल कर देता हूं, और जो चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल उन्हें मैं ठीक कर लेता हूं। तो ये आई थिंक वन ऑफ द वो सिंगर हैं जिन्होंने थोड़ा सच बोलने की हिम्मत करी है। वैसे सच बताऊं तो एक बात और है कि आपने नोटिस कर लिया है कि ऐप का नेम बदल गया है, लेकिन हम नहीं बदले। डेफिनेटली रेडियो मसी 24/7 लाइव जैसा था वैसा है, और वैसे ही आपको एंटरटेन करेगा। हमारे ऐप के जो ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली पहले जैसे रहेंगे, बट हाँ, नेम बदल चुका है मस्ती मीडिया 24/7। इसी नाम से आपको हम इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नेम से मिल जाएंगे। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।
7: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस दाल बाटी चूरमा केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: यू नो व्हाट, कुछ चीजें ना ऐसे सिखा कर किताबों के साथ नहीं बताई जा सकती, आपको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं आपको ना साइंस स्ट्रीम की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जब तक उसमें डाइसेक्शन नहीं करेंगे, लैब में नहीं जाएंगे, चीजें प्रैक्टिकली समझेंगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा। अरे मैं तो ना मतलब कुछ अलग चीज की बात कर रही हूँ। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, कभी ना कभी तो अपने कलीग्स के साथ मीटिंग्स करने के लिए बैठते होंगे, कई बार ऐसी मीटिंग्स भी होती होंगी में आप ही सूत्रधार होते होंगे, मतलब आप ही इनिशिएट कर रहे हो, आप ही एक्सप्लेन कर रहे हो, आप ही प्रेजेंटेशन दे रहे हो। उस टाइम आपको लगता होगा ना मन में कहीं ना कहीं कि थोड़ी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर होती मेरी तो मजा आ जाता। हाँ तो देखो, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। सो एक ऐसा कोर्स हम लेकर आ चुके हैं RJ अकेडमी में, जिसमें आप रेडियो प्रेजेंटेशन से लेकर पॉडकास्टिंग से लेकर इंटरव्यूइंग से लेकर कॉन्टेंट क्रिएशन से लेकर पब्लिक स्पीकिंग हर तरह का एक एंगल समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, आपको एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलेगी। हाइब्रिड मॉडल आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ पर काम किया जाएगा। सो डेफिनेटली ये सारी डिटेल्स मस्ती मीडिया नेटवर्क आपको दे रहा है RJ अकेडमी कोर्स में। एंड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@radiomasti.com.sg। सो सी यू देयर, हो सकता है मैं आपकी क्लास लेने आऊँ। हाँ RJ मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।

0: करेक्ट, तुम सुन नहीं रहे हो यार।
1: ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा दिल तो दे दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा दिल तो दे दे जाना।
2: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
5: अच्छा आपके घर में कोई ना कोई शख्स तो ऐसा हो गई होगा जिनकी बात आप फुल प्रूफ मानते होंगे, उनकी एडवाइस के बिना पत्ता भी नहीं हिलता होगा आपकी पर्सनल लाइफ में। कोई ना कोई तो होगा ना, अगर नहीं है तो बना लो, एटलीस्ट आप अपनी गलतियां किसी और के सर पे तो थोप सकते हैं कि नहीं तूने बोला था इसलिए किया, अदरवाइज मैं ये ना करता। सो डेफिनेटली ऑन दिस नोट रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनके ऊपर लोग टिप्पणी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, हा? और फिर कोई आता है निकल के जो थोड़ा सा सच बोल देता है या फिर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बोल देता है और सारी गलतियां उसी के सर पे मार दी जाती हैं। अब उनमें से कौन है वो? कंगना रनौत। हाँ जी, पहले तो एक्ट्रेस वाला रुआब तो था ही था और जब से ये पॉलिटिशियन बन चुकी है तब से ये थोड़ा चीजें और ज्यादा खुलकर बोलने लगी हैं। सो ऑफ कोर्स अगर हम बात करें सनी देओल एंड प्रीति जिंटा स्टारर बंटवारा 1947 मूवी को लेकर, तो ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई, लोगों ने पसंद भी करी लेकिन ऑफ कोर्स ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो एक संघर्ष रहा है 1947 के दौरान, इन चीजों को ही बार बार कुरेदा जा रहा था। तो कंगना रनौत ने बोल दिया कि ये जो प्रेम है हमारा पाकिस्तान के प्रति कंटेंट दिखाने का ऑन बड़े पर्दे, ये कब खत्म होगा, होगा भी या नहीं, कुछ नया दिया जाएगा या नहीं। हाँ तो चलिए, ये तो भाई ऑन गोइंग डिबेट है, लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।
6: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

अच्छा, आपके आसपास एक ना एक दोस्त ऐसा हमेशा रहा होगा जो अकेले ही पढ़ाई की, करियर की तैयारी कर रहा था, लेकिन आपके सामने क्या कह रहा था कि सुनो यार, मतलब मेरा ना इन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस है नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो आपसे आगे निकल जाता है और फिर आपकी दोस्ती में आ जाती है क्या थोड़ी सी खटास। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नूपुर मसीह मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में ये चीजें एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। बाय द वे, ऐसी खट्टी खट्टी बातें अपनी लाइफ की याद रखनी भी बहुत जरूरी है ताकि आप आगे जाकर एक बड़े शख्स बन जाएं तो इंटरव्यू में बता पाए। हाँ, अभी

0: क्रांत को देखने भी आएगा या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे सवालों के जवाब उन्हें मूवी के दौरान धीरे धीरे धीरे मिलते गए। और एक कह सकते हैं आप, नॉट ए लिस्टेड वाले एक्टर जो है ना, वो ए लिस्टेड वाले एक्टर की तरह उभर कर आएगा। तो लाइफ में चांस देना तो बनता है बॉस, राइट? चलिए आप भी अपनी लाइफ में एक चांस लीजिए, और याद रखिए कि जब आप फेसबुक पे पहुंचेंगे तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के पेज का नाम बदल चुका है, दैट इज रेडियो मस्ती 24/7, या फिर मस्ती मीडिया नेटवर्क के नाम से हम आपको मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम मस्ती मीडिया 24/7, और हमारे ऐप का नेम जो आपको स्टोर पे नजर आ रहा है, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 प्लस प्लस पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: देखिए टिट फॉर टैट हमने सुना है, आपने एक्शन का रिएक्शन भी सुना है, लेकिन एक सेलिब्रिटी ने कुछ कमेंट किया और दूसरी सेलिब्रिटी ने उसका रिप्लाई दिया, ये भी तो सुना है ना। मतलब ये वाइसी वर्सा सिचुएशन चलती रहती है, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं माहौल बहुत कम बनता है जब हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ बोले और वाइफ जो है ना वो हस्बैंड के लिए कुछ बोल कर चले जाए। अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है इनका। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ। एंड रिसेंटली गोविंदा जो है वो एयरपोर्ट पर एक आप कह सकते हैं लड़की के साथ नजर आए। सुनने में आ रहा है कि वो लड़की जो है वो एक्ट्रेस बनने के फिराक में है और वो किसी मूवी में उनके साथ नजर भी आने वाली है। और सुनीता जी के अकॉर्डिंग यानी गोविंदा की वाइफ के अकॉर्डिंग उन दोनों का कुछ तो दिक्कत है, मतलब अफेयर काइंड ऑफ चीज है। तो डेफिनेटली उनकी वाइफ ने ओपनली कह दिया था कि शुगर डैडी तुम्हारा इतना अमीर है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो। अब इसका रिप्लाई जो है ना वो गोविंदा ने दे दिया है। हाँ जी, पेपराजी फोटोग्राफर्स के सामने उन्होंने बोल दिया है कि आप सुनीता जी को कह दीजिए कि वो अपनी हदों में रहे और किसी के ऊपर ऐसे पर्सनल रिमार्क करने की जरूरत नहीं है। आप इतनी गालियां देती हैं, अगर लोग आपको गाली देने लगे तो कैसा रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो घर की लड़ाई है बाहर निकल कर आ चुकी है, अब इस बात को काफी महीने होने को आ गए। हाँ, लेट्स सी इसका कंक्लूजन कहाँ होता है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: जोश में रहो।
2: ऐसा डेफिनेटली होता है कि आपके मन में कोई सवाल है और सामने वाला बिना पूछे उसका जवाब दे दे तो कैसा रहेगा। सबको वक्त से पहले वक्त में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मतलब रहती है क्यूरियोसिटी, राइट? एंड इसी चीज को दिमाग पढ़कर अगर किसी ने अभी रिसेंटली ट्रेंड को पकड़ा है तो वो है सुहानी शाह। एंड जी इनका शो सिंगापुर में भी आने वाला है, नाम है स्पेल बाउंड। एंड 20th September 6 PM ऑनवर्ड्स आप ये शो अटेंड करेंगे। इंग्लिश में रहेगा सो कम्फर्टेबल रहेगा आपके लिए टू एंजॉय दैट मूवमेंट। सो वेन्यू रहेगा क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर 308 क्रेटा आयर रोड सिंगापुर। एंड आपको टिकट्स मिलेंगे सिस्टिक सिंगापुर पे। सो जल्दी ग्रैब कीजिए एंड गो अहेड। एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है मेरी जान। संडे वाला दिन 20th September 2026। फिलहाल मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और आने वाली बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना एक एक करके आपको बताऊं और थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी आपको बताऊं। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: साहब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: इमेजिन आप ना धीरे धीरे रील्स जैसे प्लेटफॉर्म पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उतर गए हो, ठीक है, और आप अब सोच रहे हो कि लेवल अप करने के लिए क्या किया जाए, तो आप मीम्स की ऑडियो पर भी रील्स बनाना शुरू कर देते हो, राइट? सो एक एक करके लेवल अप होते होते होते होते होते आपको मतलब मजा आने लगता है, और फिर आपको पता चलता है कि ये डायलॉग तो उस मूवी का था जिसको हमने इतने साल पहले सोचा था। हा? तो आज का सवाल भी कुछ कुछ ऐसा ही था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के ओकेजन पर थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अक्षय कुमार की आवाज में एक डायलॉग सुनाया था, और आप सबको गेस करना था कि कौन सी मूवी से है वो डायलॉग। तो डायलॉग कुछ ऐसा था मेरी जाए
3: भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना,
1: राइट? अक्षय कुमार की आवाज में ये डायलॉग, मेरी अकेले की फोटो लेना, राइट, अपने आप में मीम बन चुका है। और मूवी का नाम था क्या? खट्टा मीठा। और बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली सही जवाब मुझ तक पहुंचा दिए हैं। सो हमारा जो फेसबुक पेज है जिसका नाम बदल चुका है, दैट इज रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से भी हमें आप ढूंढ सकते हैं। इस पे बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही सवालों का जवाब यानी एक्शन का रिएक्शन देते रहा करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अगले दिन आपसे बातचीत करने की। सो मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और जाते जाते बता दूं घबराने वाली बात नहीं है, ऐप स्टोर पर बस हमारा नाम बदला है, हम नहीं, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस दाल बाटी चूरमा केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: श्रेया, जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
3: भाई की डन है मम्मा।
4: ड्यूटी
5: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
4: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
6: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: अरे हेलो हेलो, केम छो? क्या हाल है मेरे मस्ती हैंगआउट वालों? वेंसडे की अटेंडेंस लग गई? लग गई। अच्छा नहीं, मतलब मुझे लगा अभी भी ऐसा तो नहीं कि दिमाग मंडे में अटका हुआ है और आपकी जो बॉडी है वो कहीं ऑफिस में या किचन में या स्कूल में या ट्रैफिक में। पहुंच तो गए हो ना पूरे के पूरे। कोई बात नहीं, आप जहां हैं वहीं रहिए, मैं भी यही हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर और शुरू हो चुका है आपका मस्ती हैंगआउट। तो आप सिंगापुर में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, की फर्क पड़ता है? अगर आप मेरे साथ आपकी चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट या थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो परफेक्ट है। आज की अपनी कंपनी पक्की। पता है क्या, मैंने क्यों बोला आप कहीं से भी सुन रहे हो? बिकॉज हमारा ऐप है ना, और हमारे ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप मुझे कहीं से भी सुन सकते हैं। लेकिन लेकिन अब अगर आप हमारे ऐप को ढूंढ रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहां पर भी हमें ढूंढ रहे हैं, नाम आपको बदला हुआ दिखाई देगा। आप हमें ढूंढेंगे कैसे? मस्ती मीडिया 24/7 के नाम से। जी, कहीं लिख लीजिए, पॉप कर लीजिए, मस्ती मीडिया 24/7 के नाम से हमारा ऐप आपको दिखाई देगा। एंड प्लीज रिमेम्बर, सिर्फ नाम बदला है, जस्ट द नेम, और वो भी सिर्फ ऐप पर, सिर्फ हमारे ऐप पर नाम बदला है और नाम हो गया है मस्ती मीडिया 24/7। समझ रहे? बाकी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हम वही के वही है। ध्यान से सुनिए, आपका नाम बदला है। रेडियो मस्ती की मस्ती अभी भी वैसी है। आपकी फेवरेट आवाजें, आपके आरजेस, आपके होस्ट बिल्कुल वही हैं आपके साथ अपने टाइम पर। बस हम थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं तो कुछ बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मस्ती मीडिया 24/7 सिर्फ रेडियो नहीं है। रेडियो के साथ हम विजुअल एंटरटेनमेंट भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और धीरे धीरे काफी सारे नए फीचर्स भी एड ऑन करेंगे। क्या, कब, कैसे, ये मैं आपको अगर सब बता दूंगी तो फिर सरप्राइज किस बात का? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज के शो को। दिस इज मी मुग्धा आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: के।
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
4: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: ओके, तो वेंसडे की मस्ती ऑफिशियली शुरू हो गई है। और अगर आप सिंगापुर में हैं तो एक बात बताइए आप मुझे, आजकल वेदर आपको थोड़ा ऐसे पर्सनल नहीं लग रहा है? ऑनेस्टली सिंगापुर का वेदर भी ना कभी कभी लगता है जैसे उसका अपना खुद का एक मूड कैलेंडर है, वो उसके हिसाब से चलता है। सुबह सनशाइन हो जाती है, फिर ह्यूमिडिटी और बारिश का ट्रेलर आता है, और कभी कभी बस इतनी गर्मी होती है कि लगता पता नहीं कौन सी बात का बदला ले रहा है हमसे। एसी के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है हमारा, होता तो जा रहा है, मेरा तो कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे। लेकिन अभी ना थोड़ा सीरियसली हम बात कर लेते हैं ऑन अ सीरियस नोट, क्या बात है। सिंगापुर में अगस्त का वेदर ना काफी ड्राई रहा है, टेम्परेचर्स भी कई दिनों में 33 से ऑलमोस्ट 34 के आसपास ही जो है वो एक्सपेक्टेड भी है, और कुछ दिन तो आप ये मान लीजिए कि 35 तक भी जा सकता है। यस, 35 डिग्रीज तक। और इसी ड्राई वेदर के साथ हेज का कंसर्न भी सामने आ रहा है। रीजनल फायर्स पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो सुमात्रा और आसपास की जगहों पे अगर ये इंटेंसिफाई होता है तो विंड्स के डायरेक्शन के हिसाब से सिंगापुर में स्मोक आ सकता है। तो सिंगापुर वालों, पानी पीना मत भूलना, वेदर अपडेट्स पे एक नजर जरूर रखना, बाकी तो जो होगा मैं आपको बताई दूंगी। लेकिन ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आई डोंट नो, मेरे बोलते बोलते कि धूप है और बाहर देखते हूँ तो बारिश होने लग जाती है। सो इट्स लाइक दैट। अगर आपका आसमान थोड़ा आपको ऐसे स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह लग रहा है, मिस्टीरियस सा, तो इंस्टाग्राम फिल्टर समझने की गलती उसको बिल्कुल मत करना। हो सकता है कि वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा हो बिल्कुल आपकी एक्स जीएफ की तरह।

बाकी हम यही है आपका मूड क्लियर रखने के लिए। बाहर का वेदर हेजी हो रहा है तो होने दो, इधर तो सब क्लियर है ना। यस जोश में रहो।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी कौन है मम्मा?
2: जूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सुहानी आंखें जो तेरी देखी गुलाबी आ, पता है मैंने गाने की गलत स्टार्टिंग आई है, पर मैंने गलत नहीं गाई, मैंने इंटेंशनली गलत गाई है। क्यों बताती हूँ, एक बात बताओ, संडे को यूजुअली क्या होता है? अरे बाबा आई नो आज वेंसडे है, बताओ तो पहले संडे को यूजुअली क्या होता है? लेट ब्रेकफास्ट होता है, तो नेटफ्लिक्स होता है, शाम को कॉफी होती है, एंड देन ऐसा लगता है अभी तो मंडे आ गया, मूड खराब हो जाता है। लेकिन इस बार सिंगापुर में संडे इवनिंग का प्लान थोड़ा हटके हो सकता है। Why? सुहानी आंखें जी, सुहानी शाह का लाइव मेंटलिज्म एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज 20th सितंबर को संडे इवनिंग 6 बजे क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर में सुहानी आएंगे आपको स्पेल करने के लिए। उनकी आंखों में गलती से भी मत देखिएगा ऐसा मुझे लगता है। ऑनेस्टली क्या है ना कि मुझे इस इवेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि ये उन शोज में से नहीं है जहाँ पे ऑडियंस बस ऐसे बैठ जाती है, परफॉर्मेंस देखती रहती है और फिर घर चली जाती है। नो, यहाँ स्टेज और ऑडियंस के बीच का डिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कम हो जाता है, क्योंकि आपको वो चुन सकती हैं, आपको वो एज परफॉर्मर चुन सकती हैं। सुहानी शाह ना अपनी परफॉर्मेंसेज में ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, इंट्यूशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, इनको एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स करती हैं, एंड रिजल्ट आपको कुछ मोमेंट्स पे हंसी आएगी और कुछ में आप सरप्राइज हो जाएंगे। वेट व्हाट, हम पहली बार मिले हैं राइट? ये कैसे हो सकता है? एंड सिंगापुर के लिए एक और प्लस पॉइंट है, स्पेल बाउंड इंग्लिश में होस्टेड है, सो इट्स अ वेरी इजी प्लान व्हेदर यू आर कमिंग विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, और जस्ट सिंपली लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट टू डू ऑन Sunday evening, yes, Suhani Shah's show is here for you. And I'm repeating again, the venue is Greta Iyer People's Theatre, 38 Greta Iyer Road. Sunday, 20th September, 2026, 6 PM. So this time, Sunday ko sofa ko chhod dijiye, sofa ko break pe de dijiye, usko bolo ghumne jao. Ek aisi evening choose kariye, jiske baare mein aur show ke baare mein bahut baat tak discussions hote rahe. Main bhi karungi, of course, aap sun rahe hain. Main Suhani bolne ja rahi thi, Mugdha ko. Dekha Suhani ka sir.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके हाय वेलकम बैक। एक मिनट के लिए बाकी सारी मस्ती को किनारे रखते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन दुनिया में एक चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है, दिमाग की। सिंगापुर में ना ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर नए एंटी स्कैम मेजर्स बहुत तेजी से लाए जा रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर कोई अननोन बंदा आपको मैसेजेस कर रहा है, ग्रुप में ऐड कर रहा है, कॉल कर रहा है, सडनली कोई बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर लेकर आ रहा है, तो प्लीज दिल से पहले दिमाग के नोटिफिकेशन को जरूर चेक करिएगा। बह मत जाइएगा भावनाओं में, झोला लेके निकल पड़े नहीं। नए रूल्स के अंडर ऑनलाइन सर्विसेज को सस्पिशियस मैसेजेस और कॉल्स के लिए यूजर्स को बेटर वार्निंग्स देनी होंगी। समझ रहे हैं आप? अननोन कॉन्टैक्ट से ग्रुप या चैनल में अगर आपको ऐड किया जाता है तो आपका कंसेंट जरूरी होगा, ऐसे कोई भी नहीं ऐड करेगा आपको। और यूजर्स को अनवांटेड मैसेजेस या कॉल्स को साइलेंस करना है, फिल्टर करना है, ब्लॉक करना है, इसके ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अब इतने के बाद भी अगर आप किसी स्कैमर के जाल में फंस रहे हो तो भैया हम तो क्या ही कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्कैमर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दिमाग से खेलते हैं। यस, हमारी जल्दी उनका फायदा बन जाती है। Congratulations, you have won. Sir, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। मैम, अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है आपके लिए 50% का ऑफ है, अगर आज आपने अप्लाई नहीं किया तो ये छूट जाएगा। और हम सोचते हैं ओह माय गॉड, हमारी लॉटरी, एंड देन उस लॉटरी के लगने से पहले ओटीपी लग जाता है और फिर आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ऑनलाइन दुनिया में ना थोड़ा अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अननोन लिंक, अननोन नंबर्स, अननोन अट्रैक्टिव, सुपर अट्रैक्टिव ऑफर्स, तीनों से बिल्कुल अपने एक्स की तरह दूर रहिए। मस्ती करनी है तो मेरे साथ करो, बातें करो, गाने सुने, एंजॉय करो, कूदो फांदो घर में, और क्या, तो ये कौन सी मस्ती होती है इतनी सी।

0: मूड को जरा सेफ जोन में डालते हैं, गाना एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब मुलाकात करेंगे शो के सेकंड आवर में।
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक। मस्ती हैंग आउट का सेकंड आवर शुरू हो चुका है और अगर आप भी मेरे साथ यहाँ पर अभी तक हैं, सो थैंक यू। पता है क्या, क्लियरली हम दोनों की वेंसडे की केमिस्ट्री काफी अच्छी चल रही है, तभी तो आप अभी तक यहाँ पर टिके हुए हैं। अब जरा बॉलीवुड की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, मतलब मैं आपको लेकर चलती हूँ, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेयरिंग जो है सामने आ रही है, कार्तिक आर्यन और पार्वती करीब करीब सिंगल, रिमेम्बर। हाय, मुझे तो सिर्फ आने याद आ जाते, पर चल कोई बात नहीं, इससे पहले कि मैं वहां खो जाऊं वापस आती हूँ। या यू हर्ड दैट राइट, दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं एंड द मूवी इज कैप्टन इंडिया। रिपोर्ट्स अगर हम माने तो पार्वती जो है फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। कार्तिक एक पायलट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो एक बहुत ही हाई स्टेक ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू मिशन जो है उसको लीड कर रहे हैं, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिमित अमीन, यानी वो डायरेक्टर जिन्होंने चक दे इंडिया, रॉकेट सिंह, अरे वो सेल्समैन वाली, हाँ ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में दी हैं। अब कार्तिक और पार्वती की पेयरिंग लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग मैन, मतलब बहुत अमेजिंग लग रही है। एक तरफ कार्तिक का वो मेन स्ट्रीम का चार्म है दैट वी ऑल नो, पार्वती तो मतलब उनके लिए मैं क्या बोलूं, एक्टिंग की रेंज तो आप समझ ही सकते हैं। तो जो कास्टिंग टेबल पर एक जो वैरायटी निकल करके आई है काफी अलग सोचा है, क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे दोनों को साथ में देखने की। अब पार्वती का रोल क्या है, That's अभी तक मिस्ट्री। और बॉलीवुड में मिस्ट्री का मतलब पता है क्या होता है, जब तक मेकर्स खुद ना बता दें तब तक तो हम थ्योरीज ही बनाते रह सकते हैं। पर कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बना रही, मैं तो खाना भी नहीं बनाती, थ्योरी क्या बनाऊंगी।
2: सबके बिगड़े काम लाने वाली तेरा वचन ना जाए खाली।
1: फिलहाल तो मैं गाना बजा दूंगी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। जी डीजे वाले बाबू गाना बजाओ।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर में रह रहे हैं और राजस्थान का स्वाद चाहिए, घनो चोखो है। थारी भली होवे, मैं बताती हूँ कहाँ जाना है आपको। राजस्थान की रॉयल रसोई आपके सिंगापुर में आ चुकी है, और वो कहाँ आई है? शाही महारानी। इससे बेहतर कोई जगह रॉयल खाने के लिए हो भी नहीं सकती। 14 अगस्त से ये रॉयल फेस्टिवल शुरू हो चुका है और चलेगा 23 अगस्त तक। 10 दिन का ही था, काफी दिन बीत चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। एक्सपीरियंस कर लीजिए, अदरवाइज ये मौका फिर कहाँ मिलेगा। शुरुआत होगी रिफ्रेशिंग छाछ से, जो आपका वेलकम करेगी। ट्रेडिशनल स्ट्रीट फ्लेवर्स आएंगे आपके सामने, कबाब्स एंड ऑल। और उसके बाद राजस्थान का असली स्टार, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप द वेरी फेरी लाल मांस, उसके बाद मुर्ग का सोता, दाल बाटी चूरमा, रस्टिक मुर्ग, केस सांगरी एंड व्हाट नॉट। हेलो, अभी तो पिक्चर बाकी है, बिकॉज इसके बाद आप डेजर्ट्स पे जाएंगे और वहां पे तो राजे महाराज हैं भाई। घेवर और मालपुए, क्रीमी रबड़ी, फ्रेश बेरीज के साथ में, मतलब मील खत्म करने के बाद भी दिल कहेगा थोड़ा सा और देंगे क्या प्लीज। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों सेट ऑफ मेन्यूज अवेलेबल है। अर्ली बर्ड ऑफर में ऑनलाइन बुकिंग्स और प्री पेमेंट के ऑफर के साथ डिनर है 78 सिंगापुर डॉलर प्लस, इंस्टेड ऑफ द रेगुलर 88 डॉलर प्लस पर पर्सन। बस इतना याद रखिएगा, मिनिमम 2 गेस्ट की रिजर्वेशन आपको करनी है और फेस्टिवल डिनर ओनली अवेलेबल है उसमें। तो सिंगापुर में बैठे बैठे राजस्थान का स्वाद अगर आपको चखना है तो अठे आओ, राजस्थानी खाना खाओ, फिर घर जाओ और क्या।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: चलिए खाने के बाद थोड़ा म्यूजिक की बात करते हैं, और म्यूजिक की बात करें तो आशा जी का नाम कैसे ना याद आए। उनका नाम ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आशा भोसले की आवाज, ऑनेस्टली उसको डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत नहीं है, हम उसे सुन लें उतना ही बहुत है। मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वर्ड्स हमेशा कम पड़ेंगे। हाँ, शायद लेजेंड्स में आपका समर जरूर कर लेगा। खैर, एक ऐसी आवाज है जो रोमांस में शरारत भी भर सकती थी और दर्द में दिल को छू सकती थी और मस्ती में पूरी महफिल को हिला और जगा सकती थी। पर अब तो उनकी यादें हैं और उनकी यादों को एक और खूबसूरत म्यूजिकल ट्रिब्यूट मिलने जा रही है। एआर रहमान एक बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं जिसमें आशा जी का उनके साथ रिकॉर्डेड आखिरी गाना शामिल है। और इस ट्रिब्यूट को और ज्यादा स्पेशल बनाएंगे शाहरुख खान और कमल हसन। ऐसे बड़े नाम हो तो क्या बात है। म्यूजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा है ये, जो कि ट्रिब्यूट है आशा जी को। सोचिए, एक तरफ आशा जी की आवाज, एक तरफ रहमान जी का म्यूजिक, और सामने सिनेमा की वो शख्सियतें, वो जेनरेशन जिन्होंने उनकी कला को सुना, समझा और दिल से महसूस किया है। तो कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती थी, वो वक्त को रिकॉर्ड करती थी। और आशा जी की आवाज ने तो हम सबकी जिंदगी के कितने मोमेंट्स में अपनी जगह बनाई है। उनको इंस्पायर किया पहला प्यार, हार्ट ब्रेक, शादी, महफिल, दोस्तों की मस्ती, आय हाय, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सुनते ही उनके गाने याद आ जाते हैं, राइट? तो आज उनके नाम एक छोटा सा सलाम, और चलिए इसी बात पे आशा जी का एक गाना एंजॉय कर लेते हैं। सुनते रहिए मुग्धा को, स्टे कनेक्टेड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: A future man।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके अब एक ऐसी खबर जिसके बाद मुझे लग रहा है काफी लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप सडनली एक्टिव होने वाला है। हाई वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा। प्लान बनेंगे राइट, रिमेम्बर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसको देखने के बाद कितने लोगों ने रोड ट्रिप्स प्लान कर ली थी। तीन दोस्त मिल जाते थे, ब्यूटीफुल लोकेशंस पे जाते थे और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के मोमेंट्स को रीलिव करते थे। पर अब ये फिल्म खुद ही वापस आ रही है। वो एक फीलिंग जो लाइफ को थोड़ा पॉज करके एक्चुअली जीना चाहिए हमको सिखाती है। आफ्टर 15 लॉन्ग ईयर्स, बाय गॉड क्या कह रहे हो, 15 साल हो गए इसको रिलीज हुए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। जोया ने ना फाइनली कंफर्म किया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल डेवलपमेंट में है, मतलब ये फिल्म आ रही है। यस, द बॉयज माइट बी गेटिंग बैक ऑन द रोड। जोया कहती है वी आर ऑन इट। किधर? टेबल पर। गुड, लेकिन अभी प्रोजेक्ट बहुत ही अर्ली स्टेज में है। कोई बात नहीं, अर्ली स्टेज में है मतलब काम चल रहा है, फिल्म बन रही है, कहना जल्दी हो जाएगा। टीम अभी ये फिगर आउट कर रही है कि अर्जुन कबीर और इमरान की कहानी को आज के वक्त में कैसे वापस लाया जाए। प्लीज उनके बच्चे और फैमिली मत दिखाना, उसके अलावा कुछ दिखा देना। इतना सोच रहे दैट्स प्रोबेबली अ गुड थिंग, क्योंकि सीक्वल सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया का फील वापस देना है, भाई कुछ तो कहानी होनी चाहिए ना। पर इमेजिन करो वो तीन दोस्त 15 साल के बाद, लाइफ ने किसको कहां पहुंचाया होगा, किसने शादी की नहीं की, किसने करियर बदला। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इमरान की पोएट्री अभी चल रही है, बिस्किट बिस्किट बिस्किट डायमंड बिस्किट खा लो। या दोस्त अभी भी अपनी अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं, कटरीना कहाँ है, कल की कहाँ है, अभय कहाँ है, रितिक कहाँ है, कौन से स्टेज पर है, अब ये तो जोया ही आपको बता सकती है। मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सुन रहे आप मुग्धा को, स्टे ट्यून्ड।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एक जरा सा सवाल है आपसे, आपको अपनी स्कूल की सबसे पहली याद क्या आती है, मतलब याद में क्या याद आता है? देखो, किसी को चौक की स्मेल आती है, किसी को बेंच पे लास्ट मिनट का होमवर्क लिखना याद आ जाता है, किसी को एन मोमेंट पे जब आपके पेन में इंक खत्म हो जाए तो आप पूरे क्लास से पेन मांगते रहते हो, वो याद आता है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज जो आपकी स्कूल से रिलेटेड हैं और स्कूल वाली फीलिंग का जो एक जमाना होता है वो याद आ जाता है। हाई, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा और हम है शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में। सोचिए, एक क्लास रूम, टीचर सामने है, बच्चे सामने है और उसके बाद क्या है? लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, बस एक बुक है, नोटबुक और हाथ में पेन। इकलौती ऐसी जगह जहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि बच्चे स्क्रीन टाइम से दूर हैं। आपको मालूम है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ऐसी जगहों पे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में एजुकेशन में प्रिंटेड बुक्स और हैंड रिटन नोट्स को फिर से इम्पोर्टेंस दी जानी शुरू की गई है। रीजन, एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स अब सीरियसली सोच रहे हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का स्टूडेंट्स के फोकस पे, लर्निंग एबिलिटीज पे और एंगेजमेंट में ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ऑनेस्टली ये थोड़ा फनी भी है, हमने सालों तक कहा टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर और फिर टेक्नोलॉजी आई, क्लासरूम्स हमारे डिजिटल हो गए, बुक्स स्क्रीन पे शिफ्ट हो गई और अब फ्यूचर शायद हमसे कह रहा है भाई एक नोटबुक रख लेना साथ में, वो खुशबू पुरानी किताब की जानी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे अंदर से तो वो आएगी नहीं। सच में, किसी लाइब्रेरी में घुसिए तो आपको क्या महसूस होता है, पुरानी किताबों की खुशबू, कुछ लोगों के लिए वो जन्नत से कम नहीं है। और डिजिटल स्क्रीन से क्या, एक्सेसिव लाइट। सही बात है, हैंडराइटिंग की अपनी एक फीलिंग होती है यार, अपनी हैंडराइटिंग चाहे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जैसी क्यों ना आपने लिखी हो, जब वो आपकी होती है तो उसमें आपका पर्सनल टच होता है। स्कूल की वो नोटबुक, उसका फर्स्ट पेज पे आपका नाम लिखना, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको आप याद करते हो, जो आप चीजें अपने हाथ से करते थे, हर एक चीज को तीन बार अंडरलाइन करना, रेड पेन से लिखना, ग्रीन पेन से लिखना, मार्क करना, एग्जाम के एक दिन पहले जो आपको पूरी नोटबुक डेकोरेट करके रखनी होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनसे हमारा कनेक्शन होता था क्योंकि वो हमारे ह्यूमन टच की वजह से होता था, है ना। टेक्नोलॉजी रहेगी, देखो बिल्कुल रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, सवाल बस इतना है क्या हम डिजिटल और ट्रेडिशनल लर्निंग के बीच एक बेटर बैलेंस बना सकते हैं? आई एम श्योर बना सकते हैं।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, अगेन अ क्वेश्चन आपके लिए। वेलकम बैक, आप सुन रहे मस्ती हैंगआउट मुग्धा के साथ। एक सीरियस सवाल है, राखी के लिए शॉपिंग करते वक्त सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या होता है? राखी का साइज? ओ माय गॉड, ये क्या होता है? कलर? ना, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपके सामने, बिल्कुल सामने ऐसे 20 ब्यूटीफुल राखीज रखी हो और आपको लेनी सिर्फ एक है। अब ये इतनी सुंदर राखियां कहाँ मिल रही है? मुझे पता है और मैं आपसे ये बात साझा भी करूंगी, मतलब शेयर भी करूंगी। अगर आप सिंगापुर में हैं और राखी की शॉपिंग अभी तक पेंडिंग है, ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए सबसे ऊपर, क्योंकि ये वहीं पे हो रहा है। एड्रेस है 1 Campbell Lane, सिंगापुर। दिस स्टोर इज गो टू शॉप फॉर यू। यहाँ पे आपको मिलेंगी अमेजिंग अमेजिंग डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट रेंज ऑफ राखीज। और तब ये सवाल होगा कि इतनी सुंदर में से क्या लूं मैं और क्या नहीं लूं? अब ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ। सिंपल एलिगेंट से लेकर के आपको ट्रेडिशनल, फैंसी, थोड़ी फैंसी, आज तक मतलब आजकल की हर वैरायटी की आपको राखी मिल जाएगी। आपके भाई की जो भी पर्सनालिटी हो, राखी का परफेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड पता है ज्योति स्टोर्स की खास बात क्या है? सिर्फ राखी की शॉपिंग के लिए आपको राखी नहीं लेनी है, ऐसे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फेस्टिव शॉपिंग का सारा सामान एक जगह पे। भाई राखी से पहले पूजा करनी है, उसके बाद मिठाइयाँ खिलानी है, तो सारी पूजा सामग्री, अगरबत्ती, कपूर, प्रेयर के एसेंशियल्स, फ्लावर्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सारी चीजें एक ही छत के नीचे, मतलब घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही ज्योति स्टोर्स में है आपका घर का सारा सामान। बाबा क्या बात है। हाँ जी, तो अब वापस आ रहे हैं, तो राखी भी आ गई है, पूजा का सामान भी आ गया है, फेस्टिव प्रिपरेशंस आपके ऑलमोस्ट डन है। इस बार राखी के लिए लास्ट मिनट शॉपिंग, ये जो इसको अपना मिशन मत बनाइए। ज्योति स्टोर जाइए, मन भर के सारा सामान लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, बस एक ही जगह जाइए और सब लेकर के आइए। देखा कितनी कमाल की बात मैंने आपको बता दी।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके नाउ इमेजिन, जरा इमेजिनेशन को सीट बेल्ट से बांधना पड़ेगा। क्यों बताती हूँ, बिकॉज दिस इज वन ट्रैवल स्टोरी एक्चुअली दैट साउंड्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, वो भी साईफाई एमआई सॉर्ट ऑफ। हाय वेलकम बैक। सोचिए आप एक केबल कार में बैठे हैं, नीचे एक नदी है, पूरी नदी की नदी, मैं तो कभी नहीं, सामने एक अलग ही कंट्री है और आप रोड से नहीं, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, केबल कार से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। भाई साहब एमआई ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम कर सकते हैं, पर ऐसा हो रहा है। दुनिया का फर्स्ट ट्रू क्रॉस बॉर्डर केबल कार चाइना के हेहू और रशिया के लगावेश्चेंस्क। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो बहुत मुश्किल प्रोनाउंसिएशन था, 10 बार बोलने के बाद भी गलती हो गई हो तो गलती से निकल गया हमारे मुंह से, माफ कर दीजिएगा। प्लस ये दो जगहें हैं जिनको ये कनेक्ट कर रहा है दिस केबल कार, और एक रिवर भी है जिसका भी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग सा था तो मैं ना ही लूं तो अच्छा है। तो कुल मिला के 970 मीटर की जर्नी है जो आप केबल कार से पूरी करेंगे। एंड सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, नीचे पानी है, ऊपर आप है, विंडो सीट का इंपॉर्टेंस आपको यहीं पर समझ में आएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में राइड पर जा रहे हैं तो हेलो हैंग ऑन, नो नो नो नो, सारे सिक्योरिटी चेक्स क्लियर करने पड़ेंगे। सो कीप योर पासपोर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी। घर पे छोड़ के मत आइएगा कि टिकट के टायर पहुंच गए रशिया, नहीं फिर तो आप कहीं और ही जाने वाले। वैसे क्रॉस द बॉर्डर्स बहुत सी चीजें एक दूसरे को जोड़ती है, कहीं पे कोई केबल कार जोड़ रही है, कहीं ब्रिज जोड़ रहा है, एक हमारा ऐप भी है जो अलग अलग कंट्रीज को जोड़ता है, क्योंकि आप हमें कहीं से भी सुन सकते हैं, बस हमें इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। पर हम भी अपडेट हो गए बॉस, नाम बदल गया हमारा, पर सिर्फ नाम बदला है और हमारा नया नाम है मस्ती मीडिया 24/7। हम आपको इस नाम से मिलेंगे।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस दाल बाटी चूरमा केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: जी।
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: अच्छा, सो बिफोर आई से गुडबाय, एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए जिनके दिल में कभी ना कभी ये थॉट आया है, मुझे रेडियो पर या मीडिया में काम करना है, पॉडकास्ट होस्ट करना है, स्टेज पे कॉन्फिडेंटली खड़े होकर अपनी बात कहनी है। आई जस्ट वॉन्ट बी कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट? शुरू कहाँ से करें? वेल, मे बी यहीं से। मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर इज गिविंग यू अ चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, मीडिया प्रेजेंटेशन, एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक थ्योरी के, लेकिन लर्निंग फ्रॉम एक्टिव ब्रॉडकास्टर्स, और आपको मिलेगा एक्सपोजर टू अ रियल वर्किंग स्टूडियो एनवायरमेंट। बिल्कुल बिगिनर हैं आप तो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास इसका एक पूरा कोर्स मटेरियल है, थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस है, वी हैव द अनदर लेवल फॉर यू, दैट इज इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ पे एक अलग ही कोर्स ऑफ मटेरियल आपको मिलेगा। अगर आप सीरियसली ब्रॉडकास्टिंग में अपने हाथ आजमाना चाहते हैं तो एडवांस लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव होस्टिंग, सिमुलेशन, स्टूडियो एक्सपेरिमेंट, काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पे। सेशंस आर वेरी फ्लेक्सिबल, सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि बस ऐवें ही तो नहीं जी, आपको एक पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का, और हाँ, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मस्ती मीडिया नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और डिजिटल कंटेंट इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा। डिटेल्स के लिए मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर को जरा चेक कर लीजिए और कॉन्टेक्ट करिए। फिलहाल मेरी तरफ से बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अगले शो में हम करेंगे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
3: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने only on Musti Music Cafe.
4: Where you Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
3: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Musti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
4: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी कौन है मम्मा?
2: जूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Sunday Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the Morning Show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mera.
3: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
4: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Musti Music Cafe.

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: आमिर खान wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: सलमान खान wanted answers.
4: कैसे किया ये?
2: आर माधवन said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10 डे फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: नहीं रहना मुझे घर पे, नहीं रहना आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी, नहीं आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: पोटली में हरी भरी परियों के पर, मंदिरों की घंटियां, कलीसाओं का बा, किस्सों का, कहानियों का, गीतों का चाबा, घुंघर वाली झिनू वाली झुन्नू का बाबा, आया आया छिनू वाली झुन्नू का बाबा,
2: झुन्नू के बाबा की पोटली लेकर आ गया है समर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। इतनी एनर्जी इसलिए क्योंकि ये गाना ऐसा ही है,

0: सकते हैं?
1: जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, गुनगुनाएंगे गुलजार साहब को। इनहेल करेंगे गुलजार को। एक्सहेल करने की पाबंदी भाई आज के शो में, यानी सांसें रोक कर सुनिएगा जनाब, दिल में थाम कर रखिएगा गुलजार साहब को। गुलजार साहब बॉलीवुड के ऐसे गीतकार हैं जिनके पास एक बेहद खास डिक्शनरी है। उनसे वो जो अल्फाज निकाल कर लाते हैं वो हैरान कर देते हैं। हमारे सिर चढ़कर बोलता है उनका जादू। तो चलिए सबसे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं इन नगमों के साथ, और उसके बाद तफसील से करेंगे इस करिश्माई नगमा निकार की बात। और हाँ, अभी हमने उन्हीं की डिक्शनरी से एक शब्द निकाला है, चेचिस, यानी शैसी, जिस पर व्हीकल टिका होता है। आप सोच रहे होंगे इसका क्या ताल्लुक है, बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मजा लीजिए इन नगमों का और मस्ती करते रहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं समर आपके साथ।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक टू द शो, मैं हूँ समर और आपके साथ हैं आज ख्वाबों के रॉबिनहुड गुलजार साहब। शेषी के साथ मैं आपको छोड़कर गया था। इंडिया में इसको आम भाषा में चेसिस कहते हैं, तो उस पर गुलजार साहब ने अर्ज किया है कि चेसिस की तारीख पूछ लो, कब की मैन्युफैक्चर है वो, वरना अक्सर लोग ठग लेते हैं गाड़ियां बेचने वाले। मेरी चेसिस की तारीख 18 अगस्त 1934 है। समझे आप चेसिस का मतलब? जी, ये जिस्म एक उम्र की रह गुजर पर चल रही गाड़ी है। हर जिस्म के मैन्युफैक्चर की तारीख लिखी होती है उस पर, यानी आपका जन्मदिन। गुलजार साहब ने वही तो कहा ये, मेरी चेसिस की तारीख 18 अगस्त 1934 है। अब आप समझ गए होंगे कि गुलजार साहब कब पैदा हुए। ये तरीका है उनका अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कराने का। मुझे तो हमेशा के लिए याद हो गई है 18 अगस्त 1934। गुलजार साहब का जन्म हुआ भारत के गांव दीना में। आजादी के बाद जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो दीना पाकिस्तान में रह गया। झेलम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले इस गांव में गुलजार साहब अपने पिता माखन सिंह और अपने सौतेले भाई बहनों और अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करते थे। दरअसल गुलजार साहब की माँ उन्हें जन्म देते ही चल बसी थी। उनके पिता का रोजगार था दूध बेचना, उसके बाद वो एक कपड़ों की दुकान करने लगे। आजादी के बाद ये लोग भारत आ गए और दिल्ली रहने लगे। वहां भी पिताजी ने एक दुकान खोल ली। संपूर्ण यानी हमारे गुलजार साहब तब 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते थे। स्कूल से आते, दुकान में जाते, सो जाते, रात को भी दुकान पर ही रहते। ऐसे में टाइम पास करना बड़ा मुश्किल होता, तो क्या करें यही उधेड़ बुन उनके दिमाग में चलती रहती। उनकी दुकान के पास ही एक और दुकान थी जो किराए पर किताबें पढ़ने के लिए दिया करती थी और रेट थी एक हफ्ते की 1 चवन्नी 25 पैसे। गुलजार साहब हफ्ते भर में कई किताबें पढ़ लिया करते थे। दुकानदार सोच में पड़ जाता था कि यार ये तो सारी किताबें पढ़ लेगा तो फिर मेरी तो ग्राहकी मारी जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसने गुलजार साहब को एक मोटी सी किताब थमा दी। उन्हें लगा कि अब ये पूरे हफ्ते तक नहीं आएगा। किताब का नाम था गार्डनर, रविंद्रनाथ टैगोर की गार्डनर। पूरे दिन पूरी रात उस किताब को पढ़कर गुलजार साहब अगले ही दिन फिर पहुंच गए। लेकिन इस किताब ने गुलजार साहब की जिंदगी ही बदल डाली। कैसे बताऊंगा, मगर उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता ही है और इस म्यूजिकल ब्रेक को मैंने नाम दिया है गुड़ की भेली ब्रेक। सही बोल रहा हूँ, गुड़ खाकर आऊंगा और गुड़ की भेली है हमारा अगला लफ्ज जो हमने गुलजार साहब के खासम खास शब्दकोश से, उनकी डिक्शनरी से लिया है। तो कहीं जाएगा नहीं, घुलने को रहिएगा तैयार गुलजार साहब के नगमों में। सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं जमर आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक देहाती सर पर गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुनके भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडराती थी। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मजे 24/7 लाइव पर, जहां चल रहा है शो लेजेंड, जहां मैं बात कर रहा हूं मकबूल शायर गुलजार साहब की। गुलजार साहब को हम पढ़ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और धीमे धीमे चख रहे हैं। मीठे लग रहे हैं ना? धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी बढ़ने लगी तो गुड़ की भेली पिघलने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे बहते थे और वो जीभ से चाट रहा था, मैं देहाती, मेरे सर पर टैगोर की ये कविता भेली किसने रख दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब के साथ हम आपको छोड़कर गए थे जिसका नाम था गार्डनर, और हमने जिक्र किया था कि इस किताब को पढ़कर गुलजार साहब की जिंदगी ही बदल गई थी। जिंदगी यूं बदली कि इस किताब को पढ़ने के बाद गुलजार साहब की किताबों की तरतीब बदल गई। तिलिस्मी कहानियां और जासूसी नॉवेल्स के बजाय उनकी लिस्ट में आ गई लिटरेरी किताबें और उनका पूरा ध्यान अब लिखने पढ़ने की ओर हो गया। और ये सब उनके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनको डांट पड़ती थी, अरे इससे क्या होगा, कविताएं कहने लगे हो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। गुलजार साहब को पर अब ये शौक लग चुका था, तो रात को सबके सोने के बाद वो ढिबरी में यानी चिमनी जलाकर धीरे से चुपचाप पढ़ते और लिखते रहते थे। उनकी किस्मत में शायद स्कूली पढ़ाई थी नहीं, इसीलिए उन्हें उनके सौतेले भाई के पास मुंबई भेज दिया गया कि जाओ पैसा कमाओ। वहां जाकर यानी मुंबई जाकर वो करने लगे एक मोटर गैराज में काम। इसके आगे जानना चाहते हैं आप क्या हुआ, मैं भी बताने के लिए बेताब हूँ इसीलिए तो आया हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को वो अपना गुरु मानते हैं। गुलजार साहब ने 2016 में गुरुदेव की कविताओं को ट्रांसलेट करके अपना पोएट्री का कलेक्शन भी निकाला है। जब उनसे पूछा गया कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर को ही क्यों चुना, तो वो तबाक से बोले, चुना कहाँ, मैंने तो चुराया है। पता है कैसे? वो किताब जो उस दुकान वाले से लाए थे गुलजार साहब गुरुदेव की, गार्डनर, वो उन्होंने उसे कभी लौटाई ही नहीं। ऐसे गुलजार साहब ने टैगोर को चुराया, यहां हम आपको आपसे चुरा रहे हैं। कहीं जाने तो आज मैं दूंगा नहीं आपको, मैं आपको बांध के जा रहा हूं इन नगमों के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक पर। जुड़े रहिए, सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं समर आपके साथ।

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-डे फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: मैं फिर से लौट आया हूँ और मैं बात कर रहा हूँ गुलजार साहब की। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। नशे इकहरे ही अच्छे होते हैं, सब कहते हैं दोहरा नशा अच्छा नहीं, एक नशे पर दूजा नशा न चढ़ाओ, पर क्या करें, एक गुलजार का नशा और ऊपर से मैं ऐसे में सुरूर हो ही जाता है और ये सुरूर देह की मिट्टी को पार करके रूह में समा ही जाता है। तो अपनी रूह को भिगोए रखिए, इसी सुरूर में रहिए। गुलजार साहब को हम जी रहे हैं आज अपने शो लेजेंड्स में। बहरहाल मैंने आपको बताया कि गुलजार साहब पैसा कमाने के लिए बंबई भेज दिए गए अपने सौतेले भाई के पास। वहां वो एक मोटर गैराज में काम करते थे। काम था एक्सीडेंटल मोटर गाड़ी।

जहाँ वो अपनी बात कह सकते थे, सभी एक दूसरे की खिंचाई कर सकते थे। सरदार अली जाफरी उनकी कहानियों में खामियां निकालते, ये सब गुलजार साहब बड़ा एंजॉय करते थे, सीख भी रहे थे लिटरेचर। वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से भी जुड़ गए थे। वहीं एक रोज उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिन्होंने गुलजार को गीतकार बना दिया। कौन थे वो, यही जाना चाहते ना, पर इतनी जल्दी नहीं बताने वाला हूं मैं भी। हाँ, एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है यहाँ पर, एक हिंट दूंगा। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। कैस करते रहिए और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर, आपके साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: पीली धूप पहनकर तुम बागों में मत जाना। अब भला ऐसी पीली धूप पहनकर कौन जा सकता है? ओनली एंड ओनली गुलजार साहब वही ऐसा लिबास पहनवा सकते हैं। ताबीज बनाकर पहनू तुझे, उंगलियों में पहन लो ये रिश्ता, ऐसी नई नई एकदम अनोखी सी मिसाल देने वाले गीतकार फिल्मकार गुलजार साहब हैं आज हमारे साथ हमारे इस शो लेजेंड्स में। मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले थे मुंबई में और उनसे मुलाकात हुई थी एक खास शख्स की, वो थे गीतकार शैलेंद्र। गुलजार उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे, वो उनके बहुत बड़े मुरीद थे। उधर गुलजार साहब के टैलेंट को शैलेंद्र पहचान चुके थे। एक बार बिमल रॉय फिल्म बना रहे थे बंदिनी, म्यूजिक डायरेक्टर एसडी वर्मन साहब थे, शैलेंद्र से थोड़ी अनबन हो गई थी उनकी। तो शैलेंद्र ने गुलजार साहब को बुलाया और कहा कि तुम अभी के अभी चले जाओ और सचिन दा से मिल लो। गुलजार साहब चले गए। उन्होंने गीत लिखा, मोरा गोरा अंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे। ये गीत सचिन दा को बहुत पसंद आया। पर इस बीच में शैलेंद्र और सचिन दा के बीच की ये जो अनबन थी खत्म हो गई, तो गुलजार साहब का गीत उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन लेकिन लेकिन शैलेंद्र ने कहा कि भैया ये गाना तो गुलजार साहब का ही रहेगा। बिमल दा जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आ गया था, तो बाकी के सारे गाने शैलेंद्र साहब के रहे, लेकिन बिमल दा की नजर गुलजार साहब पर पड़ गई थी। बिमल रॉय ने पूछा गुलजार साहब से कि करते क्या हो? गुलजार साहब ने बता दिया कि वो एक गैराज में काम करते हैं। तो बिमल दा ने उन्हें ऑफर किया कि एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो। गुलजार साहब बोले, दादा मैं गीतकार नहीं बनना चाहता हूँ। बिमल दा बोले, मत बनना, तुम मेरे असिस्टेंट की तरह काम करो, मगर भगवान के लिए उस गैराज में काम मत करो। गुलजार साहब का गला आज भी रुंध जाता है, आंखें भर जाती हैं ये सब याद करते हुए। बिमल रॉय उनके ताउम्र गार्जियन बने रहे और उनके गुरु, और इस तरह उनको अपनी जिंदगी का दूसरा गुरु मिला। पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे बिमल रॉय। और एक तीसरी शख्सियत जिसने जिंदगी भर उनके वजूद पर अपनी परछाई रखी, वो थे, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, ब्रेक के बाद बताऊंगा, मेरे पास है एक बूंद चांद, मैं इसे कतरा कतरा पीता हूं। आप इन नगमों को सुन लीजिए। यूं गुलजार साहब की नगमे किसी घुलते चांद से कम नहीं है। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं समर आपके साथ।

0: की प्यास है।
1: आमिर खान wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: सलमान खान wanted answers.
3: कैसे किया ये?
1: आर माधवन said.
4: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
9: भाई की डन है मम्मा।
10: ड्यूटी
11: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
10: मैं उठता था।
8: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
12: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
13: खिड़की पे चोरी चोरी नंगे पांव चांद आएगा, गलियों से आएगा, नीम के पेड़ से सीटी बजाएगा, पास बुलाएगा। फिलहाल तो मैं समर आपको बुला रहा हूँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की ओर, जहाँ शो है लेजेंड्स, जिसके जरिए हम आज मुखातिब हैं गुलजार साहब से। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि एक बूंद चांद को हम तसल्ली से कतरा कतरा करके पियेंगे, तो ये जो एक बूंद चांद है ना, वो गुलजार साहब का पहला पोएट्री कलेक्शन था। अच्छा, एक और शख्स के बारे में मैं आपको बताने वाला था जिन्होंने गुलजार साहब की जिंदगी पर, उनके वजूद पर बहुत ही गहरा असर डाला। वो थे बल्ली मारा के मोहल्ले की पेचीदा गलियों, बेनूर अंधेरी गली कासिम का सबसे नूरानी शख्स मिर्जा गालिब। गुलजार साहब ने मिर्जा गालिब को उन तक भी पहुंचाया जो लोग शायरी और शायर से कोसों दूर रहा करते थे। उन्होंने दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोड की टीवी सीरीज बनाई थी मिर्जा गालिब। कहते हैं मिर्जा गालिब का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। गुलजार साहब के शब्दों में कहूं तो मिर्जा गालिब उनके लिए घर का वो बुजुर्ग मेंबर हैं जिनकी गोद में चढ़ा जाए, उनकी जेब में हाथ डालकर रुपए निकाल लिए जाएं, ईद पर उनसे ज्यादा ईदी के लिए जिद की जाए, उनकी ऐनक छेड़ी जाए, तभी तो हम सब उन्हें गालिब चचा कहते हैं। क्या किसी और को ऐसा कह सकते हैं हम? कभी मीर को किसी ने मामू कहा है? नहीं ना, ये है गालिब और गुलजार का रिश्ता। गुलजार साहब की जिंदगी में जो भी आया वो हमेशा ही रहा, या यूं कहूं कि उनकी जिंदगी लम्हों से नहीं बल्कि चंद खास लोगों से बनी है। एक और शख्स थे, एक और व्यक्ति जिनका उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा, मुंशी प्रेमचंद। उनकी राइटिंग के वो फैन थे। इसके अलावा बिमल रॉय का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी के साथ इन्होंने काम किया, बासु भट्टाचार्य, देवव्रत सेन, ऋत्विक घटक, समरेश बासु, जिनके उपन्यास पौथिक पर गुलजार साहब ने फिल्म बनाई किताब। वेल, किताब से याद आया, गुलजार साहब की जिंदगी की किताब के अगले सफहे पर हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है, या यूं कहें कौन कौन लिखा है। एक म्यूजिकल ब्रेक और ले लेते हैं। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। आप सुन रहे हैं सिंगापुर नंबर वन एंड ओनली हिंदी रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे कनेक्टेड।

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: No talking allowed. Sirf music bolega. Back to back gaane only on Musti Music Cafe.
2: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: 8 ही बिलियन उम्र जमी की होगी शायद, ऐसा ही अंदाजा है कुछ साइंसदान का। 4.6 बिलियन सालों की उम्र तो बीत चुकी है, कितनी देर लगा दी तुमने आने में। आओ चलें, अब 3 ही बिलियन साल बचे हैं। आह गुलजार, वाह गुलजार, कैसे धीमे धीमे से रस रहे हैं ना हमारे दिलों में, आज किसी सब्जे की तरह उगाए हैं हमारे चारों तरफ। और आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं ना, मैं तो कर रहा हूं। तो मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं गुलजार साहब के जिंदगी नामे को, और मैं हूं आपके साथ समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अभी मैं दो नाम लूंगा, पहला है आरडी बर्मन और दूसरा विशाल भारद्वाज। पंचमदा के साथ गुलजार साहब का रिश्ता बहुत ही खास था। वो दोनों साथ साथ खूब काम करते थे, दिन में, रात में, कभी भी, यूं कहूं हर वक्त। इन दोनों की जोड़ी ने बहुत खूबसूरत गाने हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। पंचमदा के जाने के बाद उनके साथ ये खास रिश्ता शेयर किया विशाल भारद्वाज ने। विशाल भारद्वाज से उनकी मुलाकात हुई जंगल जंगल बात चली है पता चला है गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC की एक एनिमेटेड सीरीज थी जंगल बुक, उसके लिए गाना लिखा गया था। इस गाने से जुड़ा मुझे एक वाकया याद आ रहा है। NFDC में काम करने वाले एक सज्जन रवि मलिक साहब ने इस गाने के लिरिक्स देखे और कहा, ये क्या लिखा है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तब गुलजार साहब ने बोला, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे ऑफिस में सब लुंगी पहन के आते हैं। लेकिन मलिक साहब अड़ गए, वो गुलजार साहब की सोच को समझ ही नहीं पाए। आखिरकार गुलजार साहब ने गाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनकी जिद थी कि मैं लिखूंगा तो यही लिखूंगा, और अगर मेरे शब्दों के साथ कांट छांट की जाएगी तो मैं नहीं लिखूंगा इस गाने को। तो उसके बाद जया बच्चन ने गुलजार साहब को मनाया इस गाने के लिए, और देखिए क्या खूबसूरत बनकर आया ये गाना। अभी भी जो जंगल बुक रिलीज हुई थी उसमें इस गाने को खास तौर पर ट्रिब्यूट दी गई थी। गुलजार साहब के टैलेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता, जबरदस्त टैलेंट है उनमें, कूट कूट कर भरा है। लेकिन वो AR रहमान साहब को बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट मानते हैं, मतलब आरडी बर्मन, विशाल भारद्वाज और उसके बाद AR रहमान उनकी लिस्ट में उनके बोलों को समझने वाले संगीतकारों में शुमार हैं। गुलजार साहब ये जानते हैं कि AR रहमान साहब को बोल समझ में नहीं आते हैं, लेकिन पहले वो बोल समझते हैं और उसके बाद म्यूजिक बनाते हैं। एक दफा रहमान साहब ने लॉस एंजलिस फोन किया गुलजार साहब को और उनसे कहा कि एक डमी सॉन्ग लिखना है, उसमें सनम शब्द डालना है। गुलजार साहब ने कह दिया, ये नहीं होगा, क्योंकि सनम शब्द अच्छा शब्द नहीं है। अब गुलजार साहब की अपनी डिक्शनरी है, उन्होंने कुछ शब्दों को नकार रखा है। अब बताइए, सनम शब्द को मना कर सकता है कोई आदमी, कितने ही गाने बने इस शब्द से, लेकिन नहीं लिखा साहब गुलजार साहब ने। तो यूं थोड़े से अड़ियल हैं वो, अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं और सामने वाले को अपनी बात से अग्री करवा ही लेते हैं। लीजिए, मैं तो बातें करते ही चला जा रहा हूं, मुझे कोई रोके नहीं ना, तो मैं तो बोलता ही रहूं। तो यहां पर मुझे ये खूबसूरत नगमे दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपके लिए चला रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। आप बोले तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सुनने वाले तमाम लिसनर्स, आप एंजॉय कीजिए इस गाने को और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं जमर आपके साथ।

0: मर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: फिल्म आंधी। एक सीन है, सुचित्रा सेन अपने हस्बैंड संजीव कुमार को काफी अरसे के बाद मिलती हैं। कहती हैं, बिल्कुल वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। संजीव कुमार साहब कहते हैं, जरा कमजोर हो गया हूं। सुचित्रा सेन फिर कहती हैं, नहीं कमजोर तो नहीं, तुम कभी कमजोर नहीं थे, बस थोड़े से दुबले हो गए हो। हेलो जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर शो का नाम है लेजेंड्स, और इस सीन को बहुत उम्दा शब्द देने वाले हैं गुलजार साहब, जो हमारे लेजेंड हैं आज के। गुलजार साहब न सिर्फ गीतकार हैं बल्कि डायलॉग राइटर भी हैं। उन्होंने फिल्में लिखी हैं, उन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, और उनकी पहली बनाई फिल्म थी मेरे अपने। उसके बाद उन्होंने कई फिल्म्स बनाई, और मुझे बहुत सारी बातें करनी है इसलिए उनकी फिल्म्स के नाम तो नहीं गिनवाने वाला हूं मैं, वक्त कम पड़ जाएगा नहीं तो। फिलहाल वक्त है 3 बेस्ट सॉन्ग्स जानने का जो गुलजार साहब की कलम से निकले। तो मैं आपसे इजाजत लेकर इन 3 गानों का जिक्र कर रहा हूं, बहुत ही मुश्किल काम, बहुत बड़ा फैन हूं मैं गुलजार साहब का। तो इजाजत, इसी फिल्म का मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये गाना मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर। ये फिल्म और ये गाना मुझे बेहद पसंद है। गुलजार साहब ने बनाई थी फिल्म इजाजत, अनुराधा पटेल, नसीरुद्दीन शाह और रेखा इस फिल्म में थे। कमाल की एक्टिंग की थी सभी ने। पंचम का म्यूजिक और इस गाने को गाया आशा भोसले जी ने। इस गाने को गौर से सुनिएगा। वैसे भगवान न करे किसी का किसी के साथ ब्रेकअप हो, लेकिन अगर हुआ होगा तो वो उन यादों के गलियारों में खो जाएगा। क्या लाइन थी वो, एक वो 16 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल। वाह वाह वाह। हाँ, और दूसरा गाना हम जो लेकर आए हैं वो है ऑफ कोर्स उनका पहला गाना बंदनी फिल्म का। इसकी भी एक लाइन मुझे बेहद पसंद है, एक लाज रोके पहिया, एक बात खींचे बहिया। वाह क्या शानदार लाइन है। और तीसरा गाना जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिल्म सदमा का, ए जिंदगी गले लगा ले, ये भी मेरा पसंदीदा गाना है। इलैयाराजा का म्यूजिक, सुरेश वाडकर की आवाज, बेहद खूबसूरत ये नगमा। ये गाने सुनिए, गुनगुनाइए और वाह बजाइए और सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। समर के साथ हैं आप।

0: पापाई की डन है मामा
1: ड्यूटी।
2: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: दोनों बहुत दिनों बाद मिले। उसने पूछा, वहीं पे रहते हो? वो बोला, हाँ वहीं पे हूं, लेकिन सब कुछ वहीं पर नहीं है। वेलकम बैक, समर आपके साथ, जिसका दिल आज गुले गुलजार है क्योंकि शो लेजेंड्स में गुलजार साहब हैं आज हमारे साथ। ये जिन दो किरदारों की बात मैंने अभी आपको सुनाई ना, वो उनके दो बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर्स हैं फिल्म इजाजत से, जिन्हें नसीरुद्दीन शाह और रेखा ने निभाया है। नसीर साहब गुलजार साहब के पसंदीदा एक्टर हैं। अच्छा, जब हम गुलजार साहब की जिंदगी के खास लोगों की बात कर रहे थे तो एक नाम तो हम भूल ही गए, वो है बोस की। जी हाँ, बोस की, उनकी बेटी मेघना गुलजार, उनके बेहद करीब हैं वो। अपनी पत्नी राखी से उनका रिश्ता भले ही टूट गया हो, मगर बोस की उनकी जान है। बोस की से वो बेहद प्यार करते हैं और शायद यही प्यार, यही लगाव उनको बच्चों के इतना करीब ले आया। बच्चों के लिए उन्होंने बेहतरीन गीत लिखे हैं, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ओ पापड़ वाले पंगा ना ले, एक दफा एक जंगल था, और भी बहुत सारे गाने। यहां सबको समेट पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूं अभी भी किसको। हाँ, एक शख्स जिनका नाम मैं नहीं बता पाया, वो है मशहूर गायक संगीतकार हेमंत कुमार, जिनके वो बहुत कायल थे। बंगाल में जहां जहां हेमंत दा शो करने जाते थे, गुलजार उनके साथ साथ जाते थे। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के बरसों तक वो धोती कुर्ता ही पहनते थे उन्हीं की तरह। और जब मैं इतनी सारी शख्सियतों की बात कर रहा हूं तो मीना कुमारी को कैसे भूल सकते हैं। मीना कुमारी के साथ उनके आखिरी दिनों में गुलजार साहब उनके बेहद करीब आ गए थे और बहुत अच्छा दोस्ताना रिश्ता था इन दोनों का। मीना कुमारी को भी शायरी का शौक था और उन्होंने अपनी शायरी का विरसा गुलजार साहब को ही सौंपा था। वो डायरी जिसे मीना कुमारी ने लिखा था, बहुत सारी शायरियां थी उसमें, बहुत सारी नज्में और गजलें थी जिसे बाद में गुलजार साहब ने पब्लिश कराया। और मेहंदी हसन साहब, उनसे तो जबरदस्त लगाव था गुलजार साहब का, और उन्हीं के लिए उन्होंने ये नज्म लिखी थी कि आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती। आय हाय क्या बात है। और आज का शो आय हाय वाह वाह में ही निकल गया है, तो एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, लौट कर आऊंगा। आप कहीं जाइएगा मत और आज कहीं जा भी नहीं सकते, मैग्नेट हैं गुलजार साहब हमारे साथ। सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: थोड़े से करोड़ों सालों में सूरज की ताप बुझेगी जब, और राख उड़ेगी सूरज से, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई जमीन न उभरेगी, तब एक ठंडे बुझे कोयले सा टुकड़ा ये जमीन का घूमेगा भटका भटका। मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज पर लिखी एक नज्म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे और सूरज फिर से जलने लगे। वाह गुलजार साहब, क्या ऑप्टिमिज्म है। शायर की इसी उम्मीद का एक सिरा पकड़े मैं समर एक बार फिर से बयां कर रहा हूँ गुलजार साहब की कहानी इसी शो पर जिसका नाम है लेजेंड्स। सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। तो आज हमने गुलजार साहब को जीने की एक छोटी सी कोशिश की अपने आज के शो में। गुलजार साहब का कहना है कि ये यूनिवर्स इन्फिनिटी तक है, ऐसे में हमारा उससे रिश्ता कितना छोटा है, टाइनी है। कायनात दिन पर दिन फैल रही है, नए प्लैनेट्स, नए सूरज, उसमें हमारा वजूद कुछ नहीं है। पल भर में खत्म हो सकता है ये संसार, फिर क्या तेरा क्या मेरा। जिंदगी को बस जीते चले जाइए जिस तरह चाहें। वैसे एक बात और भी वो कहते हैं कि मैं हर रोज लिखता हूं और पढ़ता हूं। भाई लफ्ज ढूंढने के लिए काम तो रोज करना पड़ता है। चाहते तो हम भी यही हैं कि गुलजार साहब यूं ही रोज नए नए लफ्ज ढूंढकर लाते रहें, खूब लिखें खूब लिखें, हमारी जिंदगी के शब्दकोश में नए लफ्ज जोड़ते रहें। हालांकि उनको अपने लफ्जों के लिए जवाब देने पड़े। मैं चलते चलते एक वाक्य और सुना देता हूं आपको। फिल्म लेकिन का गाना झूठे नैना बोले सच्ची बतिया, इसके लिए एक पत्रकार साहब ने, एक जर्नलिस्ट महोदय ने लिखा कि आशा जी ने गुलजार साहब के लिरिक्स को गलत प्रोनाउंस किया और गुलजार साहब ने इसे जाने भी दिया। तब गुलजार साहब ने क्लैरिफाई किया कि झूठे नहीं था, जूठे था, यानी जिसे किसी ने टेस्ट कर लिया हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि नैन जूठे कैसे हुए होंगे। खैर मैं सोचता हूँ और आपको भी इस शो में इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, फिर किसी लेजेंड की दास्तान लेकर लौटूंगा, उसकी कहानी बयां करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। आज का ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर से लौट आया है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपका समर लेजेंड्स वाला, और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। आज हम जिस फनकार की बात करने वाले हैं, उनके नाम का मतलब होता है पानी। और अगर म्यूजिक की बात करें, कोई धुन सुनकर ये लगे कि पानी की तरह वो बहती चली जा रही है, तो यहाँ इसका मतलब होता है सलिल चौधरी।

यही है हमारे आज के फनकार, भारतीय संगीत जगत को पानी सी धुने देने वाले सलिल चौधरी। पानी की तरह साफ निर्मल, बारिश के पानी की तरह एक ही सुर में बहती हुई, पानी की तरह हर रंग को अपने भीतर समा लेने वाली धुने, चाहे वो फोक म्यूजिक हो जैसे कोई नेपाली फोक धुन, या फिर कोई वेस्टर्न क्लासिकल सिंफनी मोजार्ट जैसी।

0: बेचारा।
1: तो ये हैं सलिल चौधरी उर्फ सलिलदा। उनका म्यूजिक होराइजन इतना बड़ा था कि उसमें अमेरिकन, ब्रिटिश और रशियन धुनें भी थीं। जैसे ये रशियन रेड आर्मी मार्च सॉन्ग, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाया गया था।

0: इसके अलावा इस होराइजन में पंजाबी भांगड़ा था, बंगाली कीर्तन भी, तो हम सब इनकी बातें करेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, शुरू से ही जानेंगे, बिल्कुल शुरू से सलिल दा को, यानी कैसे उन्होंने अपने इस म्यूजिक के स्पेशल, वेरी स्पेशल उफुक यानी होराइजन को बनाया। सेंध मारेंगे मिलकर, पर पहले कुछ गाने उनके सुन लेते हैं। आप सुनते रहेगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड स्पिट से। मैं लौटता हूँ इन गानों के बाद।
1: ओ सजना

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
2: सुनते रहिए Legends फिर से समर के साथ.
3: वेलकम बैक। आज रेडियो मसी पर शो लेजेंड्स फिर से मैं आप सुन रहे हैं सलिल दा की म्यूजिकल जर्नी के बारे में। लेकिन वो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक पोएट भी थे, राइटर भी थे और एक प्ले राइटर भी थे। एक बहुत ही शानदार मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फ्लूट, रसराज, वायलिन और पियानो प्लेयर। तो इस मल्टी टैलेंटेड शख्स का जन्म हुआ 24 परगना यानी 24 परगना वेस्ट बंगाल में 19 नवंबर को। साल था 1922। उनके पिताजी असम के टी गार्डन्स में डॉक्टर थे, तो यहाँ से उन्होंने बांग्ला और असमीज ट्यून्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। पिताजी के साथ वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक दोनों में ही वो एक्सपर्ट थे। पिताजी के पास बहुत बड़ा कलेक्शन था सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का। तो जब सलिल बड़े हो रहे थे तब वो इन्हीं धुनों को सुन सुनकर बड़े हो रहे थे, तो ये सिम्फनीज उनके साथ ही रहीं। इसके साथ ही इनके जो कजिन ब्रदर थे निखिल चौधरी, इनके साथ रहकर इनको वेस्टर्न म्यूजिक का चस्का लग गया। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके फादर के पास भी बहुत बड़ा कलेक्शन था वेस्टर्न म्यूजिक का, पर कजिन के साथ इन्होंने इसे और बढ़ाया। निखिल चौधरी ने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया जिसका नाम था मिलन परिषद। यहां से उन्होंने देखा बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को गाते हुए और सीखा भी। क्लासिकल ट्रेनिंग अपने पापा और भाई निखिल से ली। इसके साथ साथ इनका इंस्ट्रूमेंट लव भी बढ़ता चला गया। बचपन में इन्होंने अपने घर का पियानो बजाना सीखा, बाद में ये गांव आ गए और यहां से इन्होंने फ्लूट यानी बांसुरी को अपने साथ रखा। अब आपको भी मालूम है सिंगापुर के एक साथ तो ये कहानी मैं पूरी करने वाला हूँ नहीं, तो इसके आगे की कहानी इन गीतों के बाद जारी रहेगी। रेडियो मसी 24/7 लाइव।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सलील चौधरी की कहानी समर की जुबानी सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। और जो लोग सलील दा को नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि सलील दा वही हैं जिन्होंने फिल्म आनंद के गीत संगीतबद्ध किए थे, यानी म्यूजिक दिया था उस फिल्म में। तो देखिए ऐसा कहने से कितना आसान हो जाता है ना उनकी पहचान। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये समर कौन है तो आप कहेंगे अरे ये वही है ना जो लेजेंड्स की दास्तानें उनके अफसाने हमें सुनाता है। अच्छा अभी तक तो सलील दा की कहानी में सलील दा बहुत ही कच्ची कौड़ी थे, यानी मासूमियत और बचपन से लबरेज। लेकिन मैट्रिक के बाद ये अपने गांव सोनारपुर से कलकत्ता आ गए। वहां आकर इन्होंने संसार को देखा, बंगाल फेमिन को देखा, बंगाल में पीजेंट मूवमेंट को देखा, उससे बहुत ही इंस्पायर हो गए, बहुत ही ज्यादा प्रभावित। ये जुड़ गए इप्टा से, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से, और यहां से इनकी आइडियोलॉजी भी कम्युनिस्ट हो गई। ये इप्टा के लिए प्लेज लिखने लगे, गीत लिखने लगे। पूरे बंगाल में ये लोग घूमते रहते थे, इनके लिए गाने मास मूवमेंट वाले थे। उस समय पूरा बंगाल इन सब की चपेट में था। वेल यहां इनके साथ कई बार बड़े ही मजेदार किस्से भी हुए। जैसे एक दफा ये लोग गए असम। सलील दा का म्यूजिक और गाना सुनकर वहीं किसानों में से उठकर एक किसान आया और उसने उनको एक मेडल पहना दिया। वो किसान वहीं के लोकल प्लेस में काम करता था और बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था। उसके पास बहुत सारे मेडल्स थे, तो एक मेडल उन्होंने सलील दा को पहना दिया इंप्रेस होकर। सलील दा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए इससे बड़ा ऑनर कुछ नहीं हो सकता था। और वैसे भी ये सच ही है कि एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, उसके आर्ट की तारीफ। लेकिन सलील दा को हमेशा मलाल रहा कि उन्होंने उस मेडल को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे उन्हीं किसानों के लिए बेच दिया, पैसे इकट्ठे किए, उनकी मदद की। खैर ऐसे जाने कितने ही किस्से हैं उस दौरान जो हुए। फिर सलील दा मुंबई चले आए, थोड़ा परेशान हो गए थे। देश आजाद हो गया था, इप्टा भी अब उनके अकॉर्डिंग वैसा नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि ये कलाकार थे तो चुप बैठ नहीं सकते थे, बहुत कहानियां सीने में दफन थी। चले आए बॉम्बे। अब बॉम्बे आकर क्या किया, आगे की कहानी में बहुत कुछ है। एक ब्रेक की यहाँ पर दरकार है। ये बेहतरीन नगमे आपके लिए आ रहे हैं सिंगापुर, इन्हें सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए और वापस जरूर आइएगा। कहानी बड़ी रोचक हो गई है। मैं हूँ सर आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।
2: मैंने

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: सलील दा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से में, और मैं हूं आपके साथ समर लेजेंड्स वाला। तो इंडियन म्यूजिक के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। सलील दा जिनकी धुनें अद्भुत हैं, धुनों के इस जादूगर की मुलाकात सुरों के शहंशाह से यानी हेमंत दा से कैसे हुई ये आपको बता देता हूँ। गो बंगाल के सुरीले कलाकारों की यारी दोस्ती की कहानी अब आप सुनने वाले हैं मेरी जुबानी। भाई क्या है कि इन लोगों ने खूब साथ में काम किया और कभी कभी किन्हीं बातों पर गिले शिकवे भी हुए, पर भाई भाई तो भाई होता है, समझ रहे ना, यारी दोस्ती और भाईचारा कैसा होता है। सब कुछ चलता रहा लेकिन दोस्ती कहीं नहीं टूटी, भाईचारा कभी कम नहीं हुआ। दोनों का बड़ा ही गहरा कनेक्शन रहा हमेशा। मशहूर गीतकार और संगीतकार हेमंत कुमार के साथ दोनों ने बंगाली में भी बहुत काम किया और हिंदी फिल्मों में भी। जैसा मैंने बताया कि सलील दा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे तो ब्रिटिश सरकार की वजह से उनको अक्सर अंडरग्राउंड रहना पड़ता था। वही हुआ भी, जब वो 2 साल बाद लौटे तो देखा कि हेमंत कुमार साहब ने इप्टा के लिए गाना गाना शुरू कर दिया है। इसके बाद यहीं से हेमंत कुमार हेमंत दा बन गए सलील चौधरी के लिए। एक बार हेमंत कुमार को सलील दा ने कुछ गाने सुनाए, हेमंत दा उनको सुनकर बड़े खुश हुए, बोले यार अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कुछ और लिखो, कंपोज करो। सलील दा लौटने लगे तो सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि एक नई ट्यून दिमाग में आ गई। उन्होंने ये गाना हेमंत दा को बताया, हेमंत दा इसे रिकॉर्ड करने को तुरंत तैयार हो गए। मगर कहानी में फिर वही ट्विस्ट, सलील दा को अंडरग्राउंड होना पड़ा, हेमंत दा ने खुद ही ये गाना रिकॉर्ड कर लिया। बाद में ये गाना बड़ा ही फेमस हुआ, बंगाली पूजा के दौरान बजाया जाने लगा ये गाना। और सलील दा जब लौटे तो उन्होंने सुना, हेमंत दा ने आते ही कहा कि देखो सलील मैं ये रिकॉर्ड किया है। ये बात अलग है कि तब कोई ये मानने को तैयार नहीं होता था कि ये गाने सलील दा ने लिखे, वो 20-21 साल के थे तब। तो असलियत में हेमंत दा सलील दा की बहुत मदद करते थे, कभी भी कुछ भी हो सबसे मिलवाते और कहते थे ये मेरा छोटा भाई है, ये गाना इसने बनाया है। वक्त बदला, हेमंत दा बॉम्बे चले गए, सलील दा यहीं रह गए, मतलब कलकत्ता, बांग्ला फिल्म्स में वो म्यूजिक देने लगे। इस बीच कभी कभी हेमंत दा के साथ रिकॉर्डिंग भी हो जाया करती थी। फिर सलील दा भी बॉम्बे आ गए, फिर क्या हुआ ये एक ब्रेक के बाद बताऊं तो कैसा रहेगा। भाई इतने बढ़िया गाने हैं आज शो पर, तो मैं सोच रहा हूँ इन गानों का लुत्फ उठा लिया जाए सिंगापुर, क्या कहते हैं आप। तो वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, कहानी जारी रहेगी रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। मैं हूँ समर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
7: समर एक बार फिर से आपका स्वागत करता है लेजेंड्स फिर से के सफर पर। आज हमारे साथी हैं सलिल चौधरी, म्यूजिक कंपोजर, पोएट, सिंगर सलिल चौधरी। सलिल दा बॉम्बे चले आए, उन्हें बुलाया बिमल दा यानी बिमल रॉय साहब ने। वो चाहते थे कि सलिल चौधरी इनके साथ काम करें। सलिल चौधरी के पास थी एक कहानी जो उनके दिल में तभी से थी जब वो बंगाल में किसानों के लिए मूवमेंट में बिजी थे। तो ये कहानी उन्होंने बिमल रॉय को सुनाई, तो बिमल दा तैयार हो गए, बोले यार एक फिल्म बनाते हैं इस पर। ये फिल्म बनी बाद में और नाम रखा गया इसका 2 बीघा जमीन। ये फिल्म मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और इसका म्यूजिक भी सलिल दा ने दिया है। हमारी कहानी ब्रेक से पहले, मतलब सलिल दा की कहानी ब्रेक से पहले बॉम्बे तक पहुंच गई थी, जहां सलिल दा और हेमंत दा पहुंच गए थे। यहां आकर भी दोनों ने साथ साथ काम किया। वेल, दोनों ने बंगाली पूजा के गाने रिकॉर्ड किए जो बहुत पॉपुलर हो गए। ये था वो गाना दितांग दितांग बोले,
8: दितांग दितांग बोले के मादोले तन तोले कार आनंद उछले आकाश भरे जो छोनाए, दितांग दितांग बोले।
7: इसके बाद इसे हिंदी में भी रिकॉर्ड किया गया, लता दीदी ने गाया ये गाना। वेल, एक ऐसा वक्त भी आया जब हेमंत दा और सलिल दा के बीच लोगों ने बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े कंपोजर थे, कलाकार थे, एक दूसरे के खिलाफ इनको भड़का दिया गया। परंतु ये भड़के नहीं साहब, अपनी उलझने खुद सुलझाते रहे मिल बैठकर। कई हिट नंबर्स दिए दोनों ने। वक्त के साथ दोनों बिजी भी हो गए। यहाँ फिर से कुछ ऐसा हुआ जिस पर सलिल चौधरी को काफी खराब लगा। हेमंत दा ने किसी और म्यूजिशियन को लेकर सलिल दा और हेमंत दा के 10 गाने री रिकॉर्ड किए, एक LP लॉन्च कर दी। सलिल दा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चीज उनके दिल में रह गई। आखिर हेमंत दा ने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ जब वो 8 साल बाद फिर मिले? सुनना चाहते हैं? बताऊंगा मैं एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.
2: Don't stop the music, people, sing it!
3: नाचने का मन है, मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.

हेलो एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, फिर से मैं हूं समर आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं सलील चौधरी के बारे में। उन्होंने म्यूजिक के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, हम बात कर रहे थे हेमंत कुमार और सलील दा के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से बॉम्बे से कलकत्ता आकर हेमंत दा ने एक नए म्यूजिशियन के साथ उन दोनों के पुराने गाने री रिकॉर्ड कर लिए। इस पर बुरा तो बहुत लगा सलील दा को, पर वो कुछ बोले नहीं। फिर काफी लंबे अरसे तक, यही कोई मेरे ख्याल 8 साल के बाद दोनों मिले। तब सलील चौधरी इससे पहले कुछ बोले तो हेमंत दा खुद ही बोल पड़े, सलील मैंने फिर से तुम्हारे गाने गाए उससे पहले कि मेरी आवाज खराब हो जाए, क्योंकि मुझे लगा कि वो इतनी अच्छी कंपोजिशंस थी कि उस वक्त मैं उनको समझ ही नहीं पाया था। अब जब म्यूजिक का इतना ज्ञान हो गया तो इनजस्टिस ना हो तुम्हारे म्यूजिक के साथ, इसलिए मैंने गा दिए। सलील दा फिर कुछ नहीं बोल पाए, बस यही कहा मेरे हेमंत दा। भाई भाई का प्यार हुआ ना भाई, देखिए मैंने कहा था ना भाई भाई। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि किशोर दा को एज अ सिंगर सिरे से खारिज कर दिया था सलील दा ने। हालांकि इसके बाद मेरे अपने में सलील दा ने किशोर दा को गवाया भी था और तारीफ भी खूब की। ये बात तब की है जब किशोर साहब अपने आप को एज अ सिंगर एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे और उनको एक फिल्म में सफलता भी मिली। एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक था इस फिल्म में। लेकिन एक बार जब बिमल रॉय फिल्म बना रहे थे नौकरी, तो उन्होंने किशोर दा को हीरो की तरह चुना और म्यूजिक डायरेक्टर सलील दा और सिंगर के लिए चुना हेमंत कुमार साहब को। अब किशोर दा को तो गायक ही बनना था। वो अपने दो बेस्ट सॉन्ग्स दुआएं क्यों मांगू फ्रॉम फिल्म जिद्दी और जगमग जगमग करता निकला फ्रॉम फिल्म रिमझिम लेकर सलील दा से मिले। लेकिन सलील दा ने उन्हें सुना और सुनते रिजेक्ट कर दिया और कहते रहे कि ये लड़का अच्छा सिंगर नहीं है। हालांकि बर्मन दा के जाने के बाद उनके बेटे पंचम आए और उन्होंने फिल्म आराधना के लिए किशोर कुमार को चुना अपने पापा के फेवरेट मोहम्मद रफी के बजाय, और यहां से किशोर साहब एक सिंगर की तरह बड़े पॉपुलर।

और ये मेरा अपना बने सलील दा, जिन्होंने किशोर दा को गुलजार साहब की डेब्यू फिल्म मेरे अपने में गाना गवाया। तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और गाने सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August.

0: reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
1: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
2: अच्छा, सलिलदा के पास धुनों का खजाना था। वेलकम बैक, मेरा नाम समर है और सलिलदा की कहानी सुनाने के लिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं लौट आया हूँ। तो मैंने कहा कि सलिलदा के पास धुनों का खजाना था, उन्हें धुन से धुन निकालना आता था, अपनी धुनों को फिर और फिर से यूज करना आता था और वो उन्हीं धुनों से कोई और नई धुन निकाल लेते थे। उन्हें इतने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे कि इंस्ट्रूमेंट्स भी याद रखते होंगे कि ये सलील चौधरी हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, आप सुनिए।
3: रखो ना साबुन के दिल जिसमें मिला है, त्वचा के लिए ये गुणकारी है, भला है।
2: जी हाँ, ये रेक्सोना साबुन का एडवर्टीजमेंट है जिसके लिए म्यूजिक सलिलदा ने दिया था। यही नहीं, इसका जिंगल भी सलिलदा का ही था। HMT वॉचेस का पियानो म्यूजिक सलिलदा ने दिया था। ये बात अलग है कि कंपनी ने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, लेकिन धुन धुन कभी मरती नहीं, हमेशा जिंदा रहती है। चाय आपको पीने का शौक होगा, मुझे भी है। मैं कई बार चाय भी लेता हूँ दिन में, सिंगापुरी चाय। चाय का तो मजा ही कुछ और होता है, लेकिन मुझे ना वो अदरक वाली जो अपनी मसाले वाली चाय होती है ना, वो ज्यादा पसंद है भाई, उसका तो जवाब ही नहीं। वैसे लिप्टन टिया का जिंगल आपने सुना है क्या? वो भी सलिलदा ने बनाया है। ये जिंगल बाद में अलग अलग भाषाओं में भी बनाया गया। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सलिलदा सिर्फ सलिल यानी पानी नहीं थे, बल्कि वो एक पूरा का पूरा सागर थे जिसमें अपार पानी भरा रहता है। उनके पास म्यूजिक का ऐसा ही अपार खजाना था। इसके अलावा इन्होंने कुछ बैलेज में भी म्यूजिक दिया। ये वही धुनें थी जो इन्होंने फिल्म्स में भी यूज की थी। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि ये यहां कैसे जुड़े इन बैले से। दरअसल ये इप्टा से जुड़े थे ना, मैंने बताया था आपको, उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई मशहूर डांसर उदय शंकर जी के भाई के बेटे सचिन शंकर जी से। उदय शंकर जी के बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ, चलिए आज फिर बता देता हूँ। उदय शंकर जी वही है जिनके ट्रूप में गुरुदत्त साहब शामिल हो गए थे। पहले तो वो कोरियोग्राफर बने, फिर डायरेक्टर और फिर एक्टर। अच्छा, तो उदय शंकर जी के ब्रदर के बेटे सचिन शंकर से ये इप्टा में मिले। आगे की कहानी एक ब्रेक के बाद जारी रहेगी, कृपया लाइन पर बने रहें। सुनते रहें, ट्यून इन रखें, रेडियो मसी 24/7 लाइव 24 घंटे 7 दिन अब आपके साथ। मैं हूं समर, लौटता हूं इन गानों के बाद यहीं पर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। मैं कौन? मैं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स लेकर हाजिर हूँ और मैं सलील दा की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो उनको भाई भानुमति का पिटारा यानी पेंडोरा बॉक्स कहूंगा। एक धुन निकालिए, हजार और निकल आती है बॉक्स में से। एक बैले था द ट्रेन,
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक।
1: इस गाने को उन्होंने फिल्म में भी यूज किया था। ये फिल्म आशीर्वाद थी और इसे गाया था अशोक कुमार साहब ने।
3: रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक।
1: सुना आपने? ऐसे और भी एग्जांपल हैं। इसी में एक और गाना था, मराठी गाना।

0: सारा।
1: ये है जलील चौधरी, एक और सुनाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, एक 12 मिनट का बैले जिसमें क्रिकेट मैच का फुल कवरेज एक्साइटमेंट बताया गया है। ये बैले फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बनाया गया था। मैंने आपको कुछ ही पार्ट सुनाया पर आपको मजेदार लगा होगा। ये हुन हुना सुनकर क्या इमेजिन करते हैं आप? चार कहार और एक पालकी, है ना। इस धुन को हमारी इमेजिनेशन तक हमेशा के लिए पहुंचाने का काम भी सलील दा ने ही किया। और आपको क्या क्या बताऊं, बहुत कुछ है भाई, समझ नहीं आ रहा। सलील दा अपार सागर होते जा रहे हैं। ये सुनिए।

अब ये सुनिए, ये सलील दा ने अपनी बेटी अंतरा के लिए बंगाली गाने लिखे और कंपोज किए जब वो छोटी थी। तब बांग्ला में बच्चों के लिए बहुत ही कम गाने हुआ करते थे, लेकिन सलील दा ने बनाए ये गाने। एक स्माइल आ जाती ना फेस पर ऐसी चीजें सुनकर, तो मुस्कुराइए ना, किसने रोका है आपको। अच्छा, अभी तो इन गानों का एनिमेटेड वर्जन भी आ गया है, आप देख सकते हैं। वेल, मुझे लगता है कि यहाँ हम लोगों को एक ब्रेक ले लेना चाहिए, भाई इतने सारे गाने भी तो हैं, बातें तो हैं ऑफ कोर्स। तो ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे और सलील दा के म्यूजिकल होराइजन को और टटोलेंगे। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव से। बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तो रे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तो रे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: सलील दा, सलील चौधरी साहब की बात कर रहे हैं। आज हमारे इस लेजेंड्स फिर से के सफर पर मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। एक बार फिर से आपका स्वागत। लता मंगेशकर जी ने सलील दा के साथ कई गाने गाए, वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। लता दीदी अक्सर उनको याद करती हैं और बताती हैं कि सलील दा को इंग्लिश धुनों का जितना नॉलेज और शौक था उतना उनके जमाने के, उनके साथ के, उनके कंटेम्प्रेरी जो कंपोजर्स थे उनको नहीं था। वो उनको मोजार्ट ऑफ इंडिया कहती हैं। सलील दा बीथोवन, मोजार्ट, चकोस्की को सुनते थे घंटों तक और उसी में डूबे रहते थे। एक बार लता दीदी के घर पर आए तो लता दीदी ने कहा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो वो उनको उठाकर ले गए हाथ पकड़कर, म्यूजिक स्टोर पर पहुंचकर 20 एलपी रिकॉर्ड्स दिला दी और बोले ये सुना करो। तो वो जो सुनते थे, वो जो चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके सिंगर्स भी वो सब सुने और वैसा उनको कुछ दे पाए। ऐसे ही यशोदास जी भी उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि सलील दा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे और जब भी वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे तो लगता था कि सुनते जाओ सुनते जाओ, बड़ी ही हेवनली फीलिंग आती थी। एक बड़े ही अच्छे लिरिसिस्ट हुए हैं योगेश जी, उन्होंने अपना सफर सलील दा के साथ ही शुरू किया। लेकिन सलील दा के साथ उनके सफर की भी लंबी कहानी है। शुरुआती दिनों में ज्यादा काम उनको मिल नहीं रहा था, पैसे काफी कम मिलते थे, तो अपने खुद के लिखे गानों वाली फिल्म की डिस्क तक नहीं खरीद पाते थे। वो सलील दा की वाइफ के पास सुनने जाते थे क्योंकि उनके पास जुक बॉक्स था जिस पर सब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट म्यूजिक सुना करते थे और गेट टुगेदर किया करते थे। सलील दा जब घर पर होते तब भी नहीं होते, मतलब वो अपनी एक अलग ही दुनिया में होते थे, बहुत बिजी। तो योगेश ऐसे में बार बार सलील दा के पास जाते लेकिन सलील दा कुछ कहते नहीं थे। इस बीच सलील दा के लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी की डेथ हो गई, तब सलील दा ने योगेश जी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, गाना लिखो। योगेश कुछ नहीं सोच पाए न लिख पाए। इतने में सलील दा का असिस्टेंट योगेश जी पर हंसने लगा, बोला दादा की धुनों के साथ तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे। योगेश जी वहां से तुरंत उठकर चल दिए। बस स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते कुछ शब्द उन्हें ध्यान में आए और वो वापस लौटकर सलील दा के पास आए और वो रिसाइट करने लगे। ये सुनकर सलील दा जोर से चिल्लाए, अपनी वाइफ को बुलाया, सोबिता। योगेश को लगा अब तो बेटा गए काम से, दादा को लिरिक्स पसंद नहीं आए, पर दादा ने कहा ये कमाल का लिरिक्स लिखा है योगेश, सुनो। तो ये वही योगेश है जिन्होंने लिखा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए जिंदगी कैसी है पहेली। चलिए फिलहाल तो सलील दा के कंपोज किए हुए कुछ और गाने सुन लेते हैं। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप बने रहिएगा समर के साथ।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल टैलेंट्स इंडिया एवर हैड, अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, सलील चौधरी की बात आज हम कर रहे हैं अपने शो पर। शो है लेजेंड्स फिर से, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर, लेजेंड्स वाला आपके साथ। मैं आपको उनके गीत और संगीत की अनूठी कहानियां सुना रहा था आज, क्योंकि वो धुनों को ढालना जानते थे। किस तरह से, किस अंदाज में गीत बनाया जाए ये वो अच्छे से जानते थे। उनका म्यूजिक रिवोल्यूशनरी था, बदलाव वाला, कुछ अलग, कुछ फ्यूजन देशी विदेशी और लोक धुनों का। जैसा मैंने पहले भी बताया, मधुमती का गाना दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभिजा हंगेरियन फोक म्यूजिक पर बेस्ड था। चढ़ गयो पापी बिछुआ गाना उन्होंने अपने नेपाली सर्वेंट को गाते हुए सुना और उसकी धुन पर बना डाला ये गाना। राज कपूर की फिल्म जागते रहो में पहली बार इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में भांगड़ा को इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसने किया, एक बंगाली कंपोजर ने। कमाल की बात। सलील की सबसे बड़ी खासियत थी इनका बैकग्राउंड स्कोर। आपको आनंद फिल्म का वो सीन याद है जब राजेश खन्ना साहब आखिरी सांस गिन रहे होते हैं, वहां पर आता एक ट्विस्ट, घड़ी की टिक टिक, फिर सस्पेंस, क्या होगा का बेचैनी वाला म्यूजिक, फिर टेप का चलना और आखिर में टेप का खत्म हो जाना, खाली घूमते रह जाना और एक एम्प्टीनेस की फीलिंग, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक का ही कमाल था। सलील दा ने दिया था ये म्यूजिक। फिल्म कानून में एक सीन है जिसमें चोर घर में घुसता है जहां एक लाश पड़ी होती है। चोर उससे टकरा जाता है, फिर जब उसे लगता है कि ह्यूमन डेड बॉडी है तो वो खिड़की से पाइप के सहारे उतरता है। वहां पुलिस वाला उसको मिलता है। इस पूरे दृश्य को सलील दा ने कई एंगल से म्यूजिक से सजाया। जब खिड़की खुली देखकर चोर ऊपर चढ़ता है तब एक्साइटमेंट चोर के व्यू से, सस्पेंस वाला म्यूजिक क्योंकि दर्शक सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, पुलिस के पकड़ने पर फिर से एक कॉमेडी वाला म्यूजिक, जब चोर कमरे में लाश पर गिर पड़ता है और उसे मालूम पड़ता है कि ये तो डेड बॉडी है, तब डर वाला म्यूजिक, और फिर ये म्यूजिक दर्शकों के एंगल, चोर के एंगल और फिल्म निर्देशक के एंगल पर चलता है। यानी एक गाने से भी कई गुना मुश्किल है बैकग्राउंड म्यूजिक देना। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल खामोश फिल्म? नहीं ना, ना हम इमेजिन कर सकते हैं सलील दा के बिना इंडियन म्यूजिक को। तो सुनते हैं सलील दा की आवाज में ये।
2: I got tremendous love and affection from the people all over the country, and in a word, I think my best feeling is reflected in that song, जिंदगी कैसी पहली है।
3: जिंदगी कैसी है पहली।
1: फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाइएगा, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद करें। वैसे याद आप मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपसे मिलता हूँ। मिलूंगा आपसे यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: मिट्टी बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मिट्टी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सौंठ थोड़ा तेल। अरे बोल
1: अले वाले बेटा,
2: अरे मामा।

मोटे लाला शौकीन गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा तोल इसे लूट उसे दीन

कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो,
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर जुड़े सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

समझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: उसको देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले तो।
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हजार

0: ये दुश्मन जमाना। हाँ बता,
1: सबको मिलता नहीं ये खजाना,
0: जिनको अजी ये खजाना मिले,
1: देख देख उनको ये दुनिया जले,
0: हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: रात अकेली है।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: आज तो कसम से मेरी जान ना अटक सी गई थी सुबह सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरे संग कुछ ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि आज शायद मैं ऑफिस भी ना जा पाऊं, लेकिन आ गई ना। बताती हूँ क्या हुआ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड आज हुआ कुछ ऐसा कि अर्ली मॉर्निंग मेरा सेल फोन नहीं मिल रहा था। मैं इतनी डर गई कि ऐसा क्या हुआ, मैंने लास्ट टाइम उसे कहाँ यूज करके रखा था, कैसे कहाँ फोन साइलेंट है, पकड़ू कैसे, और उस पर फोन लगाने के लिए मेरे पास दूसरा फोन भी नहीं था जस्ट टू चेक आउट कि वो कहीं मुझे मिल जाए। तो बहुत कुछ ऐसे मतलब परेशानी के साथ कामली बैठ के फिर उसका एक सर्च हंट करके फिर उसे ढूंढ के उसके बाद ऑफिस आई हूँ यार। तो आज के दिन की शुरुआत तो कुछ ऐसी रही है, आपके दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी रही है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना ऑन दी एप्लीकेशन। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर करने आ चुकी है आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं। और आज मुझे ना अपने सेल्फ उनकी वो कहते हैं ना वैल्यू समझ में आ गई है, अब इसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखूंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है अभी। डोंट गो एनीवेयर।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
2: आपके अंदर ना बड़े सारे रूप हैं। आप खुद में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एक्टर हो यार, किसी ने आपको बताया नहीं होगा, है ना। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। और आप बेहतरीन एक्टर इसलिए हो बिकॉज आप अपने पार्टनर के सामने कुछ और होते हो, अपने पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हो, अपने बॉसेस के सामने, कलीग्स के सामने, MRT में अनजान लोगों के सामने, शॉपिंग करते वक्त, मतलब आप एकदम अलग इंसान हो यार, मतलब हर तरफ अलग अलग अलग, कैसे कर लेते हो ये। हाँ, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मूवी में एक्टर्स उतने रोल नहीं निभाते जितना हम अपनी लाइफ में रोल निभा लेते हैं, है ना, बचपन से लेकर 55 तक यार। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। अभी बात करते हैं एक बेहतरीन एक्टर जो बहुत ही सिलेक्टिव मूवी करते हैं और रिसेंटली उन्होंने कोई हिट मूवी दी भी नहीं है पर फिर भी हमारे फेवरेट है, दैट इज रणबीर कपूर। खानदानी जो कहते हैं ना, एक्टिंग जिन्हें आती है, उनमें से ये एक है। सो रामायण मूवी बस इसी दिवाली आने वाली है, तो सुनने में आ रहा है कि 33 मिनट्स जो है ना वो इस मूवी से सेंसरशिप के चलते काट दिए गए हैं। और वो मूवी जो एकदम 33 मिनट शॉर्टर है ना, वो चाइना में रिलीज होने वाली है, वो चाइनीज प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करी गई है। क्या बात है, क्या बात है। ग्लोबली इसको जो डिजाइन किया गया है, लेट्स सी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: We are Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: शोर सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: एक बात बताइए, राजस्थान की याद आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रॉयल फोर्ट्स या रॉयल फूड, है ना? लेकिन अगर आपका जवाब फोर्ट्स है तो मैं कुछ नहीं कर सकती सिंगापुर में, लेकिन अगर आपका जवाब फूड है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, आंसर है, मतलब शाही महारानी सिंगापुर। हां जी, लेकर आए हैं 10 डेज का राजस्थान फूड फेस्टिवल टिल 23rd of August जो है ना, आप यहाँ जाओगे तो आए हाय राजस्थानी शाही ठाट के साथ, चने के कबाब से लेकर बंजारा चिकन टिक्का से लेकर स्मोकी मेवाड़ पनीर का शूला से लेकर लाल मांस केर सांगरी एंड दाल बाटी चूरमा, घेरवर मालपुआ, रबड़ी, मतलब क्या कुछ आप एंजॉय नहीं कर सकते। सो टिल 23rd of August आप ये रॉयल फीस्ट एंजॉय कर सकते हैं शाही महारानी Level 3 फेयरमॉन्ट सिंगापुर नॉर्थ ब्रिज रोड रैफल सिटी शॉपिंग सेंटर। www.shahimaharani.com पर आप एडवांस रिजर्वेशन करवाओ। और राजस्थान अब दूर नहीं है, बस पास में है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave Spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
9: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
10: वो टाइम गया जब एक्टर्स जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा से ज्यादा फैशन दिखाते थे। ना ना ना, आजकल ना रिलैक्स होने का वक्त आ चुका है। थोड़ा आराम से जाएंगे, आराम से टहलेंगे, आराम से कपड़े पहनेंगे, मतलब अपनी बॉडी को एकदम फ्री रखना है। हाँ, ऐसे ही गोल्स दिखा रही हैं दीपिका पादुकोण अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ आ, आ, आ, आ। तो जो बम्प रिवीलिंग ट्रेंड होता है इन्होंने स्किप कर दिया है, थोड़ा सा ढक ढका कर, बिल्कुल मतलब वो कह सकते हैं आप एकदम लूज ड्रेस के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई और वो निकल गई हैं कहाँ के लिए? बेंगलुरु के लिए, अपने होम टाउन के लिए। सो डेफिनेटली जो दीपिका पादुकोण है ये साउथ के कल्चर को बिलोंग करती है और उनके यहाँ जो बेबी है ना वो उनके होम टाउन में ही होता है। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जितना मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर पता लगते लगते और भी बातें आपको पता लगी होंगी कि हमारे ऐप का नाम बदल चुका है। हाँ जी, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। फेसबुक की बात करूँ तो रेडियो मस्ती 24/7 या फिर मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से हम आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। तो डू फॉलो अस एंड सुनते रहो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।
11: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.